नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 की अश्विन मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 50 सेकंड्स हुए। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप

0: पर हमले का जिक्र किया जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एल गाइया के हमले का भी जिक्र किया जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है दलहनी खेती से मृदा उर्वरता में वृद्धि। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें दलहनी फसलों से मृदा में सुधार की। जी हां किसान भाइयों, दलहनी फसलों का खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और मृदा के स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों हमारी कृषि प्रणाली अनेक समस्याओं जैसे मृदा स्वास्थ्य, जल की कमी, वैश्विक तपन, जैव विविधता, नाइट्रोजन की कमी से जूझ रही है। इनके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में दिनों दिन कमी आ रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान में दलहनी फसलें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए दलहन उत्पादन को बदलते परिवेश में मानव पोषण, पशुधन आहार, पर्यावरण और मृदा उर्वरता का टिकाऊ स्रोत कहा जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। किसान भाइयों, दलहनी फसलें दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। विश्व में इनके क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये अपेक्षाकृत कम लागत की खाद्य फसलें हैं। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया और मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। ये फसलें किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, इसलिए इन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इन फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये अग्रिम फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा के प्रयोग को कम भी कर देते हैं। इन फसलों को हरी खाद के विकल्प के तौर पर भी उगाया जा सकता है। दलहनी फसलों में मूसला जड़ तंत्र होने के कारण इनकी जड़ें लगभग 6 से 8 फीट गहराई तक चली जाती हैं। इन फसलों के अवशेष में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होने के कारण ये केंचुओं की संख्या में वृद्धि करती है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्लोमेलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि गोंद की तरह मृदा कणों में स्थिरता प्रदान करती है। इससे मृदा संरचना में सुधार होता है और मृदा जल संचयन में वृद्धि और मृदा अपरदन में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। किसान भाइयों, खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का और ज्वार के अवशेषों की तुलना में दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण ये सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इसलिए दलहनी फसलों के अवशेषों वाली मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। लगातार अनाज वाली फसलों को उगाने से उनमें लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होने लगता है। सामान्यतः अनाज वाली फसलों पर लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप दलहनी फसलों पर नहीं होता है। कीट और रोगों के रोग जनकों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए उचित माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए इन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से कीट और रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। किसान भाइयों, सामान्यतः दलहनी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें अपनी पत्तियों से भूमि की ऊपरी सतह को ढक लेती है, जिससे भूमि की सतह से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए दलहनी फसलों को लगाया जाता है। खाद्यान्न फसल लगाने के बाद दलहन फसल लगाने से उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ पोषण मान भी मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार दलहनी फसलें की खेती से मृदा की उर्वरता में वृद्धि की जा सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें दीजिए अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था दलहनी खेती में मृदा उर्वरता में वृद्धि। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ बाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोककर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया

और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्री राम का कार्य करके लौट कर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है सृजनात्मकता। संकलन एवं वाचन शर्मिला वर्मा का।

रचनात्मकता वह स्थिति है जिसके तहत मनुष्य की ऐसी सकारात्मक सोच और क्षमता उजागर होती है जो न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज के लिए हितकारी होती है। अक्सर यह माना जाता है कि लेखक, पत्रकार, चित्रकार, आविष्कारक ही सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, पर जिस व्यक्ति के क्रियाकलाप लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं उसका स्वभाव रचनात्मक ही होता है, जबकि नकारात्मक सोच का व्यक्ति सुचारू रूप से चलने वाले कामों में हमेशा रोड़े ही अटकाता है। क्रिएटिविटी किसी भी समस्या को सुलझाने का नैसर्गिक तरीका है। सृजनात्मकता जन्मजात प्रतिभा कम, निरंतर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहने की प्रक्रिया ज्यादा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, सृजनात्मक क्षमता हरेक के अंदर होती है लेकिन उसको मूर्त रूप केवल पुरुषार्थी ही दे पाता है। रचनात्मक व्यक्ति के चित्त में शांति विद्यमान रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित के लिए काम करता है। सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य करने से उसकी आत्मबल में वृद्धि होती है। अंतःकरण में अस्थाई शांति का वास होता है। क्रिएटिव व्यक्ति के विचार हमेशा सात्विक और पवित्र होते हैं, जिससे उसके हृदय में उद्विग्नता पनप नहीं पाती। आत्मद्वंद से बचना हर कोई चाहता है। हर व्यक्ति कामना करता है कि उसके जीवन में शांति आए। इसके लिए उसे अपने हितों की पूर्ति की बजाय दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मकता का सहारा लेना होगा। शांतिमय जीवन के लिए रचना बेहद जरूरी है। क्रिएशन जीवन का ऐसा सूत्र है जो चित्त को समुद्र की तरह शांत कर देता है। यदि किसी व्यक्ति का चित्त दुखी है तो समझ लेना चाहिए कि उसने जीवन में लेश मात्र भी सृजन नहीं किया है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय था सृजनात्मकता। संकलन एवं वाचन शर्मिला वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिओम शरण के गाए चंद भक्ति गीत।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में हरिओम शरण को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है मधुमेह कारण एवं सावधानियां। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर टी पीयूष।
2: नमस्कार का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय मिश्रा और आज इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दिलवाएंगे डायबिटीज पे, जिसे चीनिया रोग भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। और श्रोताओं, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है और सभी को जानना भी चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे जो कारण है विशेषज्ञ बेहतर बताएंगे, और इससे बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है हमारे विशेषज्ञ बेहतर बताएंगे आपको। ज़रूरत है कि इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चिकित्सक की राय मानकर उसके मुताबिक अपने आचरण, खान पान, व्यवहार में बदलाव लाएं, ताकि शुगर से, डायबिटीज से, चिनिया रोग से आप खुद को बचा सकें। इस कार्यक्रम में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए आमंत्रित हैं गढ़वा जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर टी पीयूष। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
3: सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, डायबिटीज, तो डायबिटीज के इस तरह से रोगियों की संख्या जिस कदर बढ़ने लगी, तो इसमें वजह की अगर हम बात करें कि क्या वजह है इतनी संख्या बढ़ रही है, और इसके बारे में आप बताएं, फिर आगे और विशेष जानकारी आपसे लेते हैं।
3: देखिए, रोगियों की संख्या अभी से साइलेंट एपिडेमिक हम लोग कहते हैं। इसका मतलब एक महामारी है जो चुपके से फैल रही है, और इसमें हमारे जो जीन्स हैं उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे खान पान आहार व्यवहार में जो परिवर्तन आए हैं वह भी एक कारण है। हम

0: लोग जिस तरह का श्रम करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा कारण मैं यह मानता हूँ कि डायबिटीज़ इसलिए ज़्यादा सामने आ रहा है क्योंकि हम ज़्यादा जाँच करा रहे हैं। पहले आज मान लीजिए आज से 60 वर्ष पहले चल जाए तो इतने साधन भी नहीं थे। लोग समझते थे मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आँख से नहीं दिख रहा है, कभी ये नहीं समझ पाते थे कि उसमें डायबिटीज़ है कि नहीं है क्योंकि डॉक्टर उसकी जांच नहीं कराते थे, डॉक्टरों के पास जा नहीं पाते थे।
1: डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि जितनी मुँह उतनी बातें, डायबिटीज़ के बारे में जानने तो लोग ज़रूर लगे हैं लेकिन जानने वाले ऐसे किस्म के लोग हैं जो कभी कभी बेवजह भी कुछ लोगों को बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसे होता है भ्रम वाली जो स्थिति कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ जिसको हो गया वो बीमारियों का घर है, कुछ लोग कहते हैं कि एक बार हो गया तो ठीक होना मुश्किल है, जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। आज हमारे तमाम श्रोताओं को इस भ्रम से आप बाहर निकालें कि डायबिटीज़ अगर किसी को हो गया तो इसे ठीक भी किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, खुद को संभाल के ये बीमारी से दूर रहा जा सकता है।
0: हाँ ये डायबिटीज़ की जहाँ तक बात करें तो डायबिटीज़ दो तरह का होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस और इंसिपिटस। तो आज अगर हम डायबिटीज़ बोल रहे हैं तो इसका हम डायबिटीज़ मेलाइटस जो शुगर की बीमारी है उससे ही हम लोग इसका अर्थ लें। तो इसमें
2: क्या पूछ रहे,
0: हाँ इसमें से दो तीन चीज़ें हमें ये जानना है कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो भी कई स्टेजेज में होते हैं। शुरुआती एक दौर हो सकता है जिसको हम लोग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, मतलब ये अभी आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है 200 को पार नहीं किया है उसने, और अभी का जो स्टेज है उसमें आप जो है सो व्यायाम और कुछ घरेलू प्रिपरेशन जैसे मेथी होता है, जामुन के बीज होते हैं, इन सब तरह की चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। खासकर इसमें आपके फिजिकल एक्टिविटी और ये सब का योगदान होता है। लेकिन फिर जो डायबिटीज़ अगर आगे प्रोग्रेस कर जाता है, आईजीटी से सीधे डायबिटीज़ मेलाइटस डीएम में बदल जाता है अगर, तो वैसे में केवल आपके खान पान और परिश्रम से हो सकता है कि यह कंट्रोल ना होता हो, तो उसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अब दवाइयाँ जीवन भर चलेंगी या कुछ दिन में रुक जाएंगी यह भी डिपेंड करता है कि यह कुछ आंतरिक चीज़ें हैं जिसको पूरी तरह से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये पेनक्रियाज जो अग्नाशय है उसके अंदर कुछ बीटा सेल्स रहते हैं आइजोलेट्स ऑफ लेंजरहैंस में, वहाँ से ये बनता है इंसुलिन, ठीक है ना। अब ये इंसुलिन जो बनता है यही शरीर में ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर घुसने में मदद करता है। अब इस या तो इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन बढ़िया से काम न कर पाता हो जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, ये सब कारणों से आपका शुगर जो है जो खा रहे हैं उससे अवशोषित तो होगा, जो खाना आप खा रहे हैं उससे शुगर ले लिया जाएगा, ग्लूकोज ले लिया जाएगा, लेकिन वो ब्लड में घूमता रह जाएगा, वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे आप एक नाव ले लें और समुद्र में घूमने लगे, समुद्र के चारों तरफ पानी है लेकिन वो पानी आप पी नहीं सकते, इतना खारा है। तो इसी प्रकार ये यूज़ नहीं कर पाता है शरीर। तो शुरुआत में अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो मसल की एक्टिविटी द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि शुगर चला गया था और कई लोगों का फिर उसके बाद कुछ दवाइयां कुछ दिन दी, उसके बाद दवाई हटा देने से भी काम चला। लेकिन इसको लेकर मैं कहूँगा कि मीडिया में और जो फेसबुक और ये सब में कई तरह का डायबिटीज़ रिवर्सल और ये सब चीज़ें हैं, ये सब सारे बकवास हैं। डायबिटीज़ इस तरह से रिवर्स नहीं होता है, और डायबिटीज़ को रिवर्स करने के चक्कर में, हर्बल मेडिसिन अपनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने शरीर के किसी अंग को खो बैठें। तो इसलिए ज़्यादा भ्रम में नहीं पड़ना है, जो योग्य डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेनी है, उनके सलाह से चलना है।
1: कुछ लोग टाइप की बात करते हैं कि किस कई टाइप के होते हैं डायबिटीज़, तो आज ज़रा टाइप पर भी चर्चा करें।
0: हाँ पहले टाइप कहते थे, टाइप 1, टाइप 2 कहते थे, टाइप 3 भी कहते थे। तो जनरली जो पुराना था 1 में समझते थे जो छोटे उम्र में हो जाए और जो इंसुलिन के बिना ना मानता हो। 2 का मतलब हो गया जिसको दवा आप दे सकते हैं लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ भी इंसुलिन की। 3 में था

0: या जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो वो माताओं को कभी कभी माँ बनने के बाद हो जाता था। तो ये नाम बदलते रहते हैं, कई तरह के नए नए क्लासिफिकेशन आते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, अभी जो समझना ये है कि अगर इंसुलिन की ज़रूरत है शुरू से ही, तो हम उसको समझें कि टाइप 1 है। कम उम्र में होता है जनरली टाइप 1, लेकिन कम उम्र में अब टाइप 2 भी हो रहा है, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे।
1: और वो कौन सा टाइप है जो जिसके बारे में आप भी स्वीकार करते हैं कि अगर इसकी शुरुआत अगर हो गई तो लंबे समय तक दवा खानी पड़ेगी और फिर अपने आप पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उससे शरीर को आगे कुछ
0: देखिए, ध्यान, जब भी आपका शुगर लेवल हाई होता है, जब भी डायबिटीज़ होता है, ठीक है ना, तो टाइप्स तो हमने अपने अध्ययन के लिए और अपने किस तरह से उपचार देंगे डॉक्टर्स ने इस तरह का बना रखा है, आपको भी अपने बारे में जानना चाहिए। लेकिन शुगर शुरू हो गया तो आपको ध्यान देना ही देना है। अगर बीच में आप यह देखते हैं कि मेरा शुगर ठीक हो गया है, तब पर भी आपको महीने, मैक्सिमम 1 महीने से 2 महीने के अंदर टेस्ट कराते रहना पड़ेगा।
1: डॉक्टर टी पीयूष, आपने हमारे तमाम श्रोताओं को बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। हम समझते हैं कि इन तमाम बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान अगर देंगे तो आने वाले डायबिटीज़ से अपने आप को बचा पाएंगे और अगर डायबिटीज़ की शिकायत उनको हो गई है उसके बावजूद भी वक्त पे बिल्कुल सही समय पे दवा खा के अपने आदतों में थोड़ी सी तब्दीली लाकर, बदलाव लाकर अपने आप को स्वस्थ रख। आप हमारे कल्याणी कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत
0: आपको भी धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में, मधुमेह कारण एवं निदान, इस विषय पे आपको बता रहे थे डॉक्टर टी पीयूष। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली।

0: विद्यालयानाम् उद्दिश्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यति। एतदर्थं राज्य स्वास्थ्य एजेंसी इति संस्था चतुः सदस्यीयं निरीक्षण दलम् अरचयत्। अवधेयं यत् इदं दलं पञ्जीकृत चिकित्सालयानां परीक्षणं प्रारभत। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सम्प्राह यत् संयुक्त राष्ट्र संस्थायाः परिष्काराय पाठाधारित वार्ता अतीवावश्यकी वर्तते। न्यूयॉर्क इत्यत्र संयुक्त राष्ट्र महासभायां भाषमाणः विदेशमन्त्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समययापनमेव अस्ति। परिष्कारविरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टम् उक्तवान्। जलसुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्ति मन्त्रिणा सी आर पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवम भारत अन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समापन सत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितम् यत् जल संरक्षणाय जनसहभागिता अतीवावश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विक सहयोगेन एव जल सम्बद्ध समस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जल संरक्षणं न हि केवलं एकस्य कर्तव्यम् प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वम् इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तरप्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं सञ्जातम् अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषणवृष्टिं विलोक्य प्रशासनपक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवातप्रभावेन राजधान्यां लखनऊनगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्वोत्तरप्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः विद्युत्पातः तीव्रसमीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञानविभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेदस्पर्धायां कमलजीतसुरुचि युग्मेन स्वर्णं गुलवीरसिंहेन च रजतपदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेत्री क्रीडकेभ्यः वर्धापनसन्देशम् अयच्छन्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रेप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बरबुंडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपत्ति

के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरोद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू। खेल विज्ञान स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी की, संयोजन श्री प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 10 बजे हिंदी में समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी 11 बजे, चित्रपट संगीत 12 बजे, यादों की

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर होगा प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 3:30 पर होगा कार्यक्रम नाट्य तरंग। 4 बजे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर बॉम्बे टॉकीज विविध भारती का कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 5 बजे प्रादेशिक समाचार, 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

शाम की सभा में शाम 5:35 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। 6:00 प्रादेशिक समाचार का समय होगा। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम है ये। 6:30 पर ग्रामीणों और कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र से। 7:15 पर गीतों गजलों का कार्यक्रम होगा स्वरांजलि। 7:45 पर आप सुनेंगे विज्ञान जगत कार्यक्रम। 8:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष। 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 10:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11:00 हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बांसुरी वादन, रागों का रूपकम आदि, और आज के फनकार होंगे के एस गोपाल कृष्णन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग में बांसुरी वादन, राग था रूपकम और आदि। आज के फनकार थे के एस गोपाल कृष्णन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सुनते हैं भेंटवार्ता, अवैध गिरफ्तारी और हिरासत। विशेषज्ञ हैं श्री राहुल सिन्हा, उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु शरण।
1: श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में। कानून हमें अनेक अधिकार देता है, लेकिन इन अधिकारों की जानकारी होना भी उतना ही आवश्यक है। आज हम बात करेंगे गैर कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत की, और जानेंगे कि ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या कानूनी कदम उठा सकता है, क्या वह सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हम आज आपके मुलाकात करवा रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट मीडिएटर राहुल सिन्हा जी से। राहुल जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
1: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले विषय की ही चर्चा कर लेते हैं, जो हमारा विषय है गैर कानूनी गिरफ्तारी या हिरासत, इसका क्या अभिप्राय।
2: जी, जैसा अभी आपने कहा, गैर कानूनी गिरफ्तारी या गैर कानूनी हिरासत, जैसे कभी भी कोई भी अपराध होता है तो उसमें गिरफ्तारी होना आवश्यक हो जाता है। जो भी कानूनी रूप से जो भी किसी ने भी अगर गलत काम किया है तो उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। लेकिन जहां कोई भी गिरफ्तार जब व्यक्ति होता है तो उसका अधिकार है यह जानना कि उसने अपराध क्या किया है।
1: जी जी।
2: बिना उसे उसके अपराधों के बारे में बतलाए, बिना एक लीगल प्रोसीड्योर के जरिए उसकी गिरफ्तारी हुए गैर कानूनी हो जाता है। मतलब अगर किसी ने भी कोई भी प्रकार का अपराध किया है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, पेलेबल हो या नॉन पेलेबल हो, तो सबसे पहले तो गिरफ्तार हुए व्यक्ति का भी अधिकार बन जाता है कि उसे यह जानकारी प्राप्त हो कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही। और अगर उसे पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है तो वो फिर कानून के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से कोर्ट भी पहुंच सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी के ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसे बताए कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हो रही है।
1: तो क्या अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर गिरफ्तार करने के लिए आता है आपके पास, तो क्या इसका मतलब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग

0: वारंट कहते हैं, तो अरेस्ट करने के पहले क्या वारंट जरूरी है लाना?
1: जी, एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में गिरफ्तारी का वारंट पुलिस के पास अवश्य होना चाहिए, जो यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी किस प्रावधान में हो रही है।
0: ओके, गिरफ्तार करने के बाद कितने समय तक पुलिस उसको अपने हिरासत में सीधे रख सकती है, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा, तो कितने समय तक अपने पास रख सकती है?
1: जी देखिए, जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले तो वो पुलिस रिमांड में रहता है, और गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित करना होता है। 24 घंटे के भीतर पुलिस जब उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगी, तो उसके बाद वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल रिमांड में भेजेगा, जिसकी मैक्सिमम अवधि जो होती है वो 15 दिनों के लिए होती है। और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन उससे ज्यादा लंबे अवधि के लिए भी जरूरी होता है, तो वैसे केसों में कोई व्यक्ति ने वैसा अपराध किया हो जिसके लिए सजा का प्रावधान मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 साल से ऊपर की कोई सजा है, तो वैसे केसों में 90 दिनों की जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। और जहां 10 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है, वैसे केस के अगर अपराध होते हैं, तो वैसे केस में उस व्यक्ति के लिए मैक्सिमम 60 डेज का गिरफ्तारी या जुडिशियल रिमांड का प्रावधान पड़ता
0: है। एक टर्म की बात कर लेते हैं, चूंकि अब हम लोग अरेस्ट पर बात कर रहे हैं
1: जी,
0: तो इलीगल अरेस्ट, तो इसमें हैबियस कॉर्पस एक टर्म आता है। हमारे

0: हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस का रिट उस वक्त ये कहते हुए उसे किनारे कर दिया कि अभी क्योंकि इमरजेंसी लागू है तो आपका मूलभूत अधिकार भी सस्पेंडेड है, वो भी निष्कासित। हालांकि जब इमरजेंसी हटा तो उसके बाद हमारे संविधान में अमेंडमेंट लाया गया और अब हालत ये है कि अगर इमरजेंसी फिर से लागू भी होती है तो भी हमारे मूलभूत अधिकार निष्कासित नहीं होंगे। हमें फिर भी ये अधिकार मिलेगा ही कि अगर इमरजेंसी के दौरान भी हमें गिरफ्तार किया जाता है, गैर कानूनी रूप से हमारी गिरफ्तारी होती है, तब भी हम हैबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केस के माध्यम से ये तक कहा है कि अगर किसी का गैर कानूनी रूप से किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे हैबियस कॉर्पस के रिट के माध्यम से राहत तो मिलती ही है, कंपनसेशन भी मिलेगा।
1: तो ये एक बड़ी ताकत है जो हमारे पास है और जो संविधान ने हमें दिया है। और संविधान में क्या क्या उपबंध है, क्या क्या प्रावधान है इन गिरफ्तारियों के बारे में या इससे संबंधित मूलभूत अधिकार और क्या है इसमें?
0: जी, आपने अभी जैसे कहा मूलभूत अधिकार, तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 सबसे पहले तो यह पटराता है हर एक व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, यानी कि बिना कोई ठोस कारण के किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ की आजादी से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। और उसके बाद हमारे संविधान का आर्टिकल 22 हमें यह भी बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसे उसके गिरफ्तारी का कारण भी बतलाना पड़ेगा और उसके बाद उसे एक लीगल प्रोसीड्योर के तहत ही उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसे अपने सुरक्षा का भी अधिकार मिल जाता है।
1: कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे मोटे झगड़े या कुछ भी होता है, लोग पुलिस के पास जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या जो भी झगड़े होंगे, जो भी अपराध होगा, तो क्या हमेशा गिरफ्तारी जरूरी होती है पुलिस के द्वारा या कुछ खास परिस्थितियों में ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? और क्या ये सीधा अधिकार पुलिस के पास होता है कि किसी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर ले?
0: देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है तो सबसे पहले अगर पुलिस को लगता है कि कोई ठोस अपराध कंस्टिट्यूट हो रहा है, कानून के तहत उसमें गिरफ्तारी आवश्यक है, जैसे मान लीजिए एक मैं उदाहरण दूं कि मान लीजिए अगर मामूली लड़ाई मारपीट हो गई, किसी के में खरेरू हिंसा हो गई, लेकिन जिस तरह से पुलिस को पतलाया जा रहा है और पुलिस को लगता है कि जो है इसमें ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी जैसा है, ये ठोस नहीं है, तो पुलिस उस स्थिति में पहले तो प्रथम दृष्टया छानबीन करेगी, खुद सेटिस्फाई होगी कि सही में क्या अपराध कंस्टिट्यूट हो रहा है, और अगर ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है तब वो FIR रजिस्टर्ड करेगी और उसके बाद फिर वो आगे की कार्रवाई कानून के तहत आगे करेगी।
1: ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे गिरफ्तारी किसी एक व्यक्ति होती है लेकिन पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है, और कई बार ये भी देखा जाता है कि पुलिस उतनी जानकारी उस परिवार को नहीं दे रही है जो वो जानना चाहते हैं, जैसे आप गिरफ्तार किए, कहाँ ले गए, कितने दिनों तक रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर परिवार वालों को जानकारी नहीं मिल रही है तो कोई प्रावधान है जिससे कि उस परिवार को सेटिस्फाई किया जा सके?
0: देखिए, सबसे पहले तो पुलिस का ये कर्तव्य बन जाता है कि अगर कोई अपराध हो तो उसकी वो छानबीन करे, वो पुलिस जो है फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है, अपराध को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ले आती है।
1: जी,
0: अब अगर परिवार को ये का डर है कि जो उसके प्रियजन हैं उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हो गई है या वो व्यक्ति अभी कहाँ है, तो उसके बाद वो कोर्ट केस के माध्यम से यह जानकारी हासिल कर सकता है कि क्या कार्रवाई उस व्यक्ति जो उसके प्रियजन है उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई हो रही है, वो अभी कौन स्टेज में है, ये जानने का अधिकार उस व्यक्ति को है और इसके तहत ही वो फिर आके कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए वो जानकारी हासिल कर सकते।
1: कई बार ये भी देखा जाता है कि पुलिस हिरासत बहुत सारी शारीरिक यातनाएं, प्रताड़ना, वैसी स्थिति में क्या अधिकार है उस जो हिरासत में है या उसके परिवार को कुछ अधिकार है?
0: देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसे पुलिस जो है जानकारी हासिल करना चाहती है, अगर कोई अपराध हुआ है वो अपराध को लेकर पुलिस कभी कभी ऐसे तरीके से भी अपनाती है जो हम कह सकते हैं कि मानवता को लेकर जो है वो कोर्ट में उसकी शिकायत की जा सकती है। और अब काफी केस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पुलिस को उतनी सख्ती नहीं अपनानी चाहिए जो मानवता के विरोध चला जाए।
1: कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग कुछ गरीब हैं, सक्षम नहीं है कि वो अपना केस लड़ सकें या वकील लग सकते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में कानूनी

0: सहायता प्राप्त करने का कोई प्रावधान है वैसे व्यक्तियों के लिए?
1: जी हाँ सर, ऐसे स्थिति में भी कानूनी प्रावधान है जहाँ पे कोई व्यक्ति जो काफी गरीब है और उसे कानूनी सहायता का वो अर्जी देना चाहता
0: जैसे
1: है
0: तो एक उदाहरण की जिसे गिरफ्तार किया गया हो चाहता है कि मैं हाईकोर्ट में इसके लिए अपील करूँ, या तो वैसी स्थिति में हाईकोर्ट तो हर कोई नहीं जा पाएगा, तो एक सवाल तो ये उठता है।
1: जी सर, वैसे स्थिति में जैसे अभी सालसा ये सब कंस्टिट्यूट हुआ है तो यहाँ वो एक अर्जी दे सकता है, और अगर वो उस ग्राउंड को जो हमारे कानूनी प्रावधानों में दिया गया है, दर्शाया गया है, उस प्रावधानों को वो सेटिस्फाई करता है तो उसे फिर फ्री में कानूनी सहायता दी जाती है।
0: एक और प्रश्न है कि अगर कानूनी सहायता के लिए मान लिया कुछ प्रावधान है, वहाँ पहुँच भी गए, तो कौन कौन से वो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें अपने पास रखना चाहिए ताकि अपने पक्ष को हम प्रभावशाली तरीके से कोर्ट के सामने रख सके?
1: देखिए सर, सबसे पहले तो जब भी कोर्ट के पास कोई केस आता है तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि पुलिस के FIR में क्या लिखा हुआ है और फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या बात निकल के सामने आ रही है, मतलब उसका चार्जशीट में क्या ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है, और उसके बाद गवाह होता है। एक मामला बहुत लंबा चलता है, अगर मैं सलाह दूंगा तो सबसे पहले तो कोई व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, और सबसे पहले उसे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कोई अच्छे वकील के पास जाए, जो वकील इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसके अगेंस्ट जो भी चीज उसके पक्ष में आ रहा है वो उसके पक्ष में ही रहे, वो एविडेंस जो है गायब नहीं हो जाए। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि समय जिस तरह से आगे बढ़ता है कुछ सपूत जो हैं वो मिटने लग जाते हैं, तो उन्हें पहले से सुनिश्चित कर दिया जाए कि वो सही तरीके से रहें, तो बाद में उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को काफी मदद मिले।
0: अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर हम मामलों की बात करें कि जिस तरह के विवाद होते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं कारण, तो किन किन तरह के अपराधों के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, या सारे अपराध है इस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं?
1: जी, प्रमुख रूप से अगर मैं कहूँ तो कोई भी फंडामेंटल राइट जहाँ इन्फ्रिंस होता है, जहाँ स्टेट को लेकर कोई अपराध कंस्टिट्यूट होता है, वो सब अपराध उसको लेकर हाई कोर्ट जा सकते। आर्टिकल 226 जहाँ आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, 226 हमें अधिकार देता है कि वैसे मूलभूत अधिकार जिनका हनन हुआ है तो हम हाई कोर्ट का खटखटा सकते हैं।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस विषय पर कि इल्लीगल अरेस्ट यानी गैर कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत, इस विषय पर आपने जानकारी दी, और क्या हम इसके अगेंस्ट अगर ऐसा होता है तो क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस जानकारी के लिए और अपना बहुमूल्य समय निकालकर आकाशवाणी में हमारे श्रोताओं के समक्ष आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कानून की बात। आप सुन रहे थे इसके तहत अवैध गिरफ्तारी और हिरासत। विशेषज्ञ थे राहुल सिन्हा, उनसे बातचीत कर रहे थे प्रभु शरण। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी देर में।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता की साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम प्रास्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले

0: स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
5: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर और सहयोग से

0: मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
1: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
0: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
1: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
0: हमेशा सही और एएनएम से संपर्क में रहें।
1: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार बीपीएल परिवार को
0: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
4: नक्शा तो ठीक है पर इसमें शौचालय कहाँ है?
3: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
4: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में भारी बारिश के कारण रांची, जमशेदपुर और चाईबासा में आज सभी स्कूल बंद। स्वर्णरेखा और खरगई नदियां उफान पर, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश किया रद्द। अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय भुगतान का निर्देश। राज्य पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से 1114 गुमशुदा मोबाइल ट्रैक कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। कोडरमा में सबसे ज्यादा बरामदगी। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी की रांची में पांचवी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस जारी। देश भर के 1000 से अधिक विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर कर रहे हैं मंथन। और रांची के खादगड़ा बस टर्मिनल परिसर में खड़ी कंडम और लावारिस बसों को हटाने का निर्देश। 7 दिनों में नहीं हटाने पर होगी नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में लगातार भारी बारिश के बीच चाईबासा, जमशेदपुर और रांची जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आज कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
1: जमशेदपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण रेखा नदी का जल स्तर 122.22 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं खरकई नदी का जल स्तर 131.70 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता मेरी मुर्मू तथा अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। मामले के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने प्रार्थियों को अप्रैल 2025 से उनके बकाया मानदेय का भुगतान करने का भी स्पष्ट निर्देश दिया है।
2: आज सारा सरकार का जो भी सर्कुलर था JEPC का, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का, उस सबको सेट असाइड कर दिया हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट ने बोला कि ये लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेवा में, और जैसे चल रहा था इन लोगों का मानदेय भी, जिस पीरियड का ये लोग काम किए वो सारा पेमेंट भी होगा। रिट पिटीशन अलाउ हो गया।
0: राज्य पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से राज्यभर से खोजे गए 1114 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को वापस लौटा दिए हैं। कल सभी जिलों में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत सबसे ज्यादा 177 मोबाइल कोडरमा में और 105 गिरिडीह में सौंपे गए। रांची में 47 और हजारीबाग में 39 फोन बरामद किए गए। हजारीबाग के ASP अमित कुमार ने बताया कि खोए फोन को ट्रैक करने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
3: जो भी जिन व्यक्तियों का मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, छीना गया है, CIR पोर्टल के माध्यम से हम लोग इसे खोजबीन करते हैं और उसको हम लोग रिकवर कर हर महीने के 25 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यालय के निर्देश के आलोक में हम लोग उसे वितरित करते हैं जिनका मोबाइल। आज 39 लोगों को हम लोग मोबाइल वितरित के लिए यहाँ पर लाए हुए हैं, सभी को आपके समक्ष वितरित किया गया।
0: रांची SSP के निर्देश पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रिंग रोड पर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को हटा दिया है। पुलिस के अनुसार सड़कों पर वाहन खड़े होने से लगातार दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान चालकों को भविष्य में सड़क पर गाड़ी न लगाने की सख्त हिदायत देते हुए निर्धारित पार्किंग का ही उपयोग करने की अपील की गई। त्योहारों के मद्देनजर लोहरदगा और धनबाद जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। लोहरदगा में कई दुकानों से नमूने रांची भेजे गए और गंदगी पर जुर्माना लगाया गया। उधर धनबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजा कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर संदिग्ध पनीर घी जब्त किया गया तथा एक डेयरी सील की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चल रहा है।
4: अभी तक तो नोटिस डिलीवरी है 39 लाख वोटर का डिलीवरी हो चुका है। अभी कुछ जनरेशन के भी बाकी मैक्सिमम हम लोग देंगे वो कौन रहे वो कुछ चाहता है तो ज्यादा नहीं कर अभी गलती है उससे थोड़ा सा आगे डेट हो रहेगी ताकि सभी केस काम को इस वक्त।
0: रांची में 3 दिवसीय 5वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसका उद्घाटन कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 1000 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
5: 5th मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के आयोजन झारखंड में मिला और इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में होना था लेकिन वहाँ ना जाने क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने कहा कि नहीं हमारे झारखंड छोटा झारखंड जरूर है लेकिन हर वो कॉन्फ्रेंस हम करेंगे जिससे लोगों को लाभ।
0: सम्मेलन में मोतियाबिंद और रेटिना जैसी आंखों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर मंथन किया जा रहा है। रांची नगर निगम ने खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर में लंबे समय से खड़ी लावारिस कंडम और अनुपयोगी बसों को हटाने का निर्देश दिया है। अपर नगर आयुक्त द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार बस मालिकों को 7 दिनों के भीतर अपने वाहन हटाने होंगे। निर्धारित अवधि में बसें न हटाने पर निगम सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से इनका मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई शुरू करेगा। तय समय सीमा के बाद बस मालिकों का कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी। रांची के नेपाल हाउस स्थित PFMS राज्य निदेशालय में 18 से 25 सितंबर तक आयोजित राजभाषा हिंदी सप्ताह संपन्न हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना था। सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं में वरिष्ठ लेखा अधिकारी विजय वर्धन और सुरेंद्र वर्मा सहित तकनीकी टीम ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बर्णवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता। बर्णवाल ने 2 घंटे 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने खराब मौसम और स्कूलों के बंद रहने की सूचना को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची में आज स्कूल बंद, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला में बाढ़ का खतरा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, रांची में बच्चों से भरी बस पर गिरा पेड़। प्रभात खबर ने लिखा है, पेयजल विभाग के साथ इंजीनियर्स को AVI बना दे दी 23 जिलों की कमान। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।

0: और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में भारी बारिश के कारण रांची, जमशेदपुर और चाईबासा में आज सभी स्कूल बंद। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश किया रद्द। अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय भुगतान का निर्देश। राज्य पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल के मदद से 1114 गुमशुदा मोबाइल ट्रैक कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। कोडरमा में सबसे ज्यादा बरामदगी। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी की रांची में पांचवी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस जारी। देश भर के 1000 से अधिक विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर कर रहे हैं मंथन। और रांची के खादघड़ा बस टर्मिनल परिसर में खड़ी कंडम और लावारिस बसों को हटाने का निर्देश। 7 दिनों में नहीं हटाने पर होगी नीलामी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
2: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या एएनएम दीदी से संपर्क करो।
1: अच्छा,
2: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियाँ अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या एएनएम दीदी से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
6: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
5: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
6: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
5: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं नमस्ते। संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही मन ठहर सा जाता है। आवाज में न बहुत अधिक बनावट, न आवश्यकता से ज्यादा उतार चढ़ाव, बस गहराई, मिठास और भावनाओं की सच्चाई। ऐसी ही एक आवाज थी हेमंत कुमार की। हेमंत कुमार भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने गायक, संगीतकार और निर्माता तीनों रूपों में अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी फिल्मों ने उनकी आवाज में प्रेम, विरह, रहस्य, उदासी और जीवन के अनेक रंगों को स्वर दिया। बंगाली संगीत में वे रविंद्र संगीत के प्रमुख गायकों में गिने जाते हैं। हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल से संबंधित था। बाद में उनका परिवार कोलकाता में जा बसा। उनका बचपन और शिक्षा कोलकाता में ही बीती। उन्होंने मित्रा इंस्टीट्यूशन से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे जादवपुर के संस्थान में प्रवेश लिया। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने संगीत को अपना जीवन बना लिया। शुरुआत में उन्होंने साहित्य में भी रुचि दिखाई। उनकी एक कहानी प्रतिष्ठित बंगाली पत्रिका देश में प्रकाशित हुई थी। लेकिन धीरे धीरे संगीत का सबसे बड़ा जुनून बनकर उनके ऊपर उभरा।

हेमंत कुमार की संगीत यात्रा बहुत कम उम्र से शुरू हो गई थी। उन्होंने रेडियो के लिए भी शुरुआती दौर में गाया। 1937 में उनका पहला रिकॉर्ड जारी हुआ। उनकी शुरुआती रिकॉर्ड के किए गए गीतों में जनित जद्दी गो तुमी और बोलो गो बोलो मोरे शामिल थे। उन्होंने संगीत की शिक्षा अलग अलग गुरुओं से प्राप्त की। रविंद्र संगीत का भी गंभीर अध्ययन किया। यही कारण है कि उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की समझ के साथ साथ भावनात्मक गहराई भी दिखाई देती है। हेमंत कुमार केवल हिंदी फिल्मों के गायक नहीं थे, उन्होंने बंगाली संगीत में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। वे रविंद्र संगीत के अत्यंत लोकप्रिय गायकों में रहे। उनकी आवाज़ में रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं की भावनाओं को जिस तरह अभिव्यक्ति मिली, उससे उन्हें बंगाल के घर घर में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं उस सफ़र की जिन्होंने पूरे देश में उन्हें पहचान दिलाई। 1950 के दशक की शुरुआत में हेमंत कुमार मुंबई आए। उन्होंने हेमिन गुप्ता के साथ उनका जुड़ाव उन्हें हिंदी सिनेमा की ओर लेकर आया। फिल्म आनंद मठ के लिए उन्होंने संगीत दिया। इसी फिल्म में लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया वंदे मातरम उनकी चर्चित संगीत रचनाओं में शामिल हुआ। इसके बाद बात आती है खुद हेमंत कुमार के गाने की, और उनको ये पहचान बहुत पहले ही मिल चुकी थी। उनके बहुत सारे गीतों में और हेमंत कुमार और लता मंगेशकर सहित कई महान गायकों के साथ उन्होंने काम किया, धुनें बनाई, लता जी की आवाज़ को प्रयोग किया। कहीं दीप जले कहीं दिल एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें हेमंत कुमार के संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ ने मिलकर धूम मचा दी थी। उनकी गायकी में खासियत यही थी कि बहुत ठहराव था। वे ऊंची आवाज़ में अपनी कला दिखाने के बजाय भावनाओं की आवाज़ को गहराई से व्यक्त करते थे। शब्दों की स्पष्टता, आवाज़ में गहराई, भावनाओं की सादगी, धुन की सहजता और गीत के अर्थ को समझाकर गाने की खूबी थी उनके अंदर।

श्रोताओं, बात करते हैं उनके निजी जिंदगी के बारे में। हेमंत कुमार का विवाह बेला मुखर्जी से हुआ था। उनके परिवार में पुत्र जयंत मुखर्जी और पुत्री रानू मुखर्जी का उल्लेख मिलता है। अपनी निजी जिंदगी में वे संगीत के साथ लगातार जुड़े रहे और जीवन के अंतिम वर्षों में भी सक्रिय रहे। आज के ही दिन यानी 26 सितंबर 1989 को कलकत्ता में 69 साल की उम्र में हेमंत कुमार का निधन हुआ था। लेकिन कलाकारों की असली उम्र उनके जन्म और मृत्यु की तारीखों से नहीं नापी जाती। जब तक उनके गीत बजते रहते हैं, उनकी आवाज़ श्रोताओं तक पहुंचती रहती है। आज हम उन्हीं के गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। श्रोताओं, हेमंत कुमार ने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी एक ऐसी जगह बनाई जिसे समय मिटा नहीं सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। एक ही परिस्थिति को दो लोग अलग अलग तरह से देख सकते हैं। कोई उनमें केवल परेशानी देख सकता है, तो कोई उससे मिलने वाली सीख और संभावना को भी देख सकता है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है समस्या को स्वीकार करके समाधान की दिशा में सोचना। इसका मतलब यही है, तात्पर्य यही है श्रोताओं, कि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपने व्यवहार में मिठास रखिए और हर दिन को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब आइए लगे हाथों आपको मौसम की भी जानकारी दे देते हैं। तो बाहर का नज़ारा देखकर आप सबों को ये पता चल ही गया होगा कि मौसम कैसा है। आज है 26 सितंबर, तो आज बारिश का मौसम है, बादलों और बारिश गरज चमक के साथ होने की संभावना है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है। खुले पेड़ के नीचे रहना उचित नहीं है। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अगर हम कल के मौसम की बात करें तो कल का मौसम भी लगभग इसी तरह अस्थिर रहने की संभावना है। भारत मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में कल गरज चमक बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए ख़राब मौसम में आप घर से बाहर ना ही निकले तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले।

चलिए श्रोताओं, आज है 26 सितंबर, तो 26 सितंबर का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। आज के ही दिन 1087 ईस्वी में विलियम द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट बने। 1777 में अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश सैनिकों का फिलाडेल्फिया पर कब्जा हुआ था। 1872 में न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना था। 1950 में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को सोल को अपने कब्जे में लिया था। 1950 में इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी। 1960 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच बहस की पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था। 1984 में यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन के हवाले करने की सहमति हुई थी। 1998 में सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डिस्मंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। 2001 में अमेरिका ने लादेन के बाद कश्मीरी आतंकवादियों से निपटने का भारत को आश्वासन दिया था। 2004 में अमेरिका ने असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत की तकनीक देने का निर्णय लिया था। अब आइए आज के ही दिन जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आपको बता दें। आज के ही दिन 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी का जन्म हुआ था। 1888 में T.S. इलियट नोबेल पुरस्कार विजेता, अमेरिका के अंग्रेजी लेखन में इनका जन्म हुआ था 1888 में आज के ही दिन। 1912 में मोहम्मद सलीम सुलेमानी लोकसभा के सांसद थे। और 1921 में सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक थे, इनका जन्म हुआ था। 1923 में देवानंद फिल्मी अभिनेता, इनका जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। और 1932 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। अब आइए 26 सितंबर को किन प्रमुख व्यक्तियों के निधन हुए थे उनके बारे में भी आपको बता दें। 1956 में लक्ष्मण काशीनाथ किलोस्कर भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इनका निधन आज के ही दिन हुआ था। और 1977 में उदय शंकर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नर्तक और नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता थे, इनका निधन भी आज के ही दिन हुआ था। 1889 में हेमंत कुमार हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार, इनका निधन भी आज के ही दिन हुआ था। अब आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं एक

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही दूध का पैकेट, नाश्ते की पैकिंग बोतल, पानी की बोतल और सब्जियों की थैली और दिन भर में न जाने कितनी प्लास्टिक की चीज़ें हमारे हाथों से गुजरती हैं। यानी हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे साथ जरूर रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लास्टिक को हम कुछ मिनट इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक देते हैं, वह आखिर जाता कहाँ है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि यह प्लास्टिक बनता कैसे है और हमारे पर्यावरण के लिए चुनौती क्यों बन रहा है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम सुनेंगे प्लास्टिक की पूरी कहानी कि ये प्लास्टिक आखिर बनती कैसे है और ये हमारे घरों तक, हमारे पास, हमारे हाथों में कैसे आती है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लास्टिक का वास्तव में क्या है। ये प्लास्टिक एक तरह का बहुलक यानी कि पॉलीमर पदार्थ है। पॉलीमर का अर्थ होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों के आपस में जुड़ने में जो बनती है, लंबी श्रृंखला बनती है, उसे पॉलीमर कहा जाता है। प्लास्टिक बनाने के लिए मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को अलग अलग पदार्थों में विभाजित किया जाता है और इसमें से कुछ पदार्थों से छोटे छोटे रासायनिक अणु आपस में प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें मोनोमर कहते हैं। इन मोनोमर अणुओं को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आपस में जोड़कर लंबी श्रृंखला बनाई जाती है। इसी प्रक्रिया को सामान्य रूप से पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इससे अलग अलग प्रकार के पॉलीमर बनते हैं। इसके बाद इन पदार्थों में उसकी ज़रूरत के अनुसार विभिन्न रसायन मिलाए जाते हैं ताकि प्लास्टिक को ज़्यादा मजबूत, लचीला, पारदर्शी, रंगीन, गर्मी सहने योग्य बनाया जा सके। फिर प्लास्टिक को गर्म करके अलग अलग आकार दिए जाते हैं, जैसे बोतल, डिब्बा, पाइप, खिलौना, पैकेट, कुर्सी या अन्य वस्तुएं। अब इसके प्लास्टिक के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। इसमें पहला है PET यानी पेट, जिसका इस्तेमाल पानी और शीतल पेय के बोतलों में काफ़ी होता है। दूसरा है HDPE, जिससे कई प्रकार के बोतलें और पाइप और घरेलू सामान बनाए जाते हैं। तीसरा है PVC, जिसका इस्तेमाल पाइप, तारों की कोटिंग और निर्माण सामग्री बनाने में की जाती है। चौथा है LDPE, जिसका इस्तेमाल कुछ प्रकार की प्लास्टिक थैलियों और पैकेजिंग में होती है। पांचवा है PP या पॉलीप्रोपिलीन, जिसका उपयोग खाद्य कंटेनर, डिब्बे और कई घरेलू वस्तुओं में किया जाता है। छठा है पॉलिस्टरीन, जिसका उपयोग पैकेजिंग और कुछ डिस्पोजल वस्तुओं में किया जाता है। हर प्लास्टिक का गुण अलग होता है और इसी कारण इसका इस्तेमाल भी अलग अलग कामों में किया जाता है। प्लास्टिक इतना लोकप्रिय है श्रोताओं कि इसके व्यापक इस्तेमाल के कारण इसकी कीमत कम नहीं होती है। प्लास्टिक हल्का, मजबूत, टिकाऊ, आसानी से ढाला जा सकने वाला और पानी के प्रति काफ़ी हद तक प्रतिरोधी होता है। कांच या धातु की तुलना में कई परिस्थितियों में प्लास्टिक की वस्तुओं को बनाना और परिवहन करना आसान होता है। अस्पतालों में भी कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। सिरिंज, मेडिकल पैकेजिंग, दस्ताने और कई चिकित्सा उपकरणों में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। खेत में भी पाइप, सिंचाई सामग्री, मल्चिंग और पैकेजिंग जैसी कई चीज़ों में प्लास्टिक का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वाहन उद्योग और निर्माण क्षेत्र में भी प्लास्टिक महत्वपूर्ण सामग्री है। इसलिए यह कहना सही होगा कि प्लास्टिक स्वयं हर स्थिति में खराब चीज़ नहीं है। समस्या मुख्य रूप से इसके आवश्यक और गलत तरीके से इस्तेमाल करके और कचड़े में फेंकने से फैलने वाली जो बीमारी है, उससे जो पर्यावरण को नुकसान है, उससे है। प्लास्टिक के बहुत सारे नुकसान भी हैं।
पर्यावरण पे इसके बहुत खराब असर पड़ता है। प्लास्टिक की कई वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण में बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं, वे आसानी से प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से विघटित नहीं होती हैं। इस कारण प्लास्टिक कचरा जमीन, नदियों और तालाबों और समुद्रों में जमा होता जाता है। प्लास्टिक की थैलियां और दूसरे कचरे नलियों में फंसकर जल निकासी को बाधित कर सकते हैं और बारिश के समय जल भराव की समस्या को बढ़ा सकते हैं। कूड़े में पड़ी प्लास्टिक की थैलियां और पैकेजिंग कई बार पशु खा लेते हैं, इससे उनके पाचन तंत्र में परेशानी पैदा हो जाती है और उनके स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। समुद्र और नदियों में पहुंचा प्लास्टिक मछलियां, कछुए और अन्य जलीय जीवों के लिए भी खतरा बन सकता है। प्लास्टिक जलाना भी सुरक्षित नहीं है। कई लोग प्लास्टिक के कचरे को आग लगाकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुले में प्लास्टिक जलाना उचित नहीं है। कुछ प्लास्टिक जलने पर जहरीली या हानिकारक धुएं और रसायन छोड़ सकते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है और उनके आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही खराब असर पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या भी बहुत हद तक बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। जब वे बेहद छोटे कण बन जाते हैं तो उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये कण पानी, मिट्टी और हवा में पाए जा सकते हैं और खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के मानव स्वास्थ्य पर प्रभावों को लेकर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना सावधानी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब प्लास्टिक कचरा खेतों, खाली जमीन और जल स्रोतों में पहुंचता है तो यह पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। प्लास्टिक कचरे का गलत तरीके से निपटाना करने में नदियों और तालाबों में प्रदूषण बढ़ सकते हैं। अब श्रोता, बात ये आती है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पहले तो सबसे पहली बात है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि इन सबसे हमें निपटने में आसानी हो। छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं कुछ हद तक। जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कम करें। बाजार जाते समय कपड़े या दूसरे पुनः उपयोग योग्य बैग अपने पास जरूर रखें। पानी के लिए बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले सुरक्षित विकल्पों का उपयोग करें। प्लास्टिक की वस्तु का इस्तेमाल करने के बाद सड़क, नाली या खुले स्थान पर ना फेंकें। जहां संभव हो प्लास्टिक कचरे को अलग करके कचरा संग्रह और रिसाइकिल की व्यवस्था तक पहुंचाएं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि हर प्लास्टिक वस्तु को घर पर खुद रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे प्रबंधन मतलब जहाँ पे होता है वहाँ पे आप इसे पहुँचा सकते हैं। तो अब आइए सुन लेते हैं प्यारा सा गीत, फिर करेंगे कुछ और बातें प्लास्टिक के बारे में ही।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते बारी है आज के टिप्स की। अब हम आज प्लास्टिक के बारे में ही बात कर रहे थे, तो आज टिप्स प्लास्टिक के प्रबंधन के बारे में ही, और वो भी घर में। आपको क्या करना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें और कपड़े के थैले का यूज़ करें। उपयोगी प्लास्टिक वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से दोबारा इस्तेमाल करें। गीले और सूखे कचड़े को अलग रखें और प्लास्टिक को सूखे कचड़े से अलग रखने का अपने अंदर ये रखें कि आपको अलग रखना है, गीला हो कचड़ा, सूखा हो कचड़ा या प्लास्टिक। प्लास्टिक को नाली, सड़क या खुले स्थान पर न फेंकें। प्लास्टिक कचड़े को कभी खुले में न जलाएं। रिसाइकिल होने वाले प्लास्टिक को स्थानीय कचरा संग्रह और रिसाइकिलिंग व्यवस्था तक पहुँचाएँ। श्रोताओं, बस इतना सा, आप अपने घर में इन सब बातों का ख्याल रख के प्लास्टिक इस्तेमाल कम करके सही तरीके से अलग करके अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और अपने वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बना सकते हैं। कार्यक्रम जोहार पलामू में आज के लिए इतना ही, इसलिए आप हमेशा श्रोताओं हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम जोहार पलामू से अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दें।

0: श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एक दौर या किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं किया जा सकता। वे अपने समय के भी होते हैं और आने वाली पीढ़ियों के भी। ऐसा ही एक नाम है देवानंद साहब का। देवानंद सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता, निर्देशक और लेखक भी थे। 6 दशक से अधिक लंबे और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्मों का दौर दिया और उसी फिल्मों के वे हिस्सा बने।
1: भाई और बहनों, कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 2,00,000, कोई कहता है 50,000, कितने गाने कितनी जबानों में और किस किस किस्म के गाने गाए हैं। माँ का गाना है तो बच्चों को रुला दिया, बच्चों का गाना है तो माँ को रुला दिया, भाई का गाना है तो बहन को रुला दिया, बहन का गाना है तो माँ को रुला दिया है। वो लता मंगेशकर आज मेरी बहन मेरे कहने के ऊपर मेरे सिर पर बोझ रखकर एहसान का और आज आ गई हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।

करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो आप लोगों के सामने आए। लता मंगेशकर।

श्रोताओं, देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को तत्कालिक ब्रिटिश भारत के पंजाब के शकरगढ़ क्षेत्र में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। उनके पिता श्री किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे और उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी आगे चलकर भारतीय फिल्म जगत से जुड़े और दोनों ने फिल्म निर्देशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवानंद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा थी और वे इसी सपने को लेकर मुंबई आए। मुंबई उस समय भी फिल्मी दुनिया का बड़ा केंद्र था, लेकिन यहाँ किसी नए कलाकार के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। देवानंद ने शुरुआत

में काम की तलाश की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सैन्य सेंसर कार्यालय में भी काम किया, लेकिन उनके मन में अभिनय का सपना लगातार जीवित रहा और आखिरकार वह मौका आया, उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।

श्रोताओ, साल 1946 में देवानंद को फिल्म हम एक है में अभिनय करने का अवसर मिला। ये इनकी पहली फिल्म थी। ये फिल्म प्रभात फिल्म कंपनी की थी और इसकी कहानी हिंदू मुस्लिम एकता जैसे विषय से जुड़ी थी। यही वो फिल्म थी जिसने देवानंद को अपने फिल्मी करियर की शुरुआत दी। इसी दौर में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई। दोनों के बीच आगे चलकर के गहरी दोस्ती बनी और भारतीय सिनेमा को इस दोस्ती से कई महत्वपूर्ण फिल्में मिली। जिद्दी, ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे व्यावसायिक तौर पे पहली बार इनको बड़ी सफलता मिली। इसके बाद फिल्मों के अवसर बढ़ने लगे, लेकिन अभी वह दौर आना बाकी था जब देवानंद का नाम हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों में गिना जाने वाला था। करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया फिल्म बाजी से, जो आई थी 1951 में, जिसमें देवानंद को एक नई दिशा दी। फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। बाजी के बाद देवानंद की पहचान एक ऐसे अभिनेता के रूप में मजबूत हुई जो अपराध, रहस्य, शहरी जीवन से जुड़ी कहानियों में भी प्रभावशाली नजर आते हैं। इसी दौर में हिंदी सिनेमा में कई तरह के क्राइम फिल्मों का दौर विकसित हुआ, जिसके बाद बॉम्बे नायर में जोड़ा गया। अब आइए सुन लेते हैं इन्हीं की फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, देवानंद के करियर में नौकेतन फिल्म्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साल 1949 में देवानंद और उनके भाई चेतन आनंद ने मिलकर नौकेतन फिल्म्स की स्थापना की। यह केवल एक प्रोडक्शंस कंपनी नहीं थी, बल्कि नए विचारों और नए कलाकारों को अवसर देने वाला मंच भी बनी। नौकेतन के माध्यम से देवानंद ने कई नई प्रतिभाओं के साथ काम किया और हिंदी सिनेमा में अलग अलग विषयों पर फिल्में बनाने का भी प्रयास किया। देवानंद की फिल्मों की सफलता में संगीत का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी कई फिल्मों के गीत आज भी

प्रिय हैं। उनका लंबे समय तक संगीतकार सचिन देव बर्मन के साथ शानदार सहयोग रहा है। बाद में राहुल देव बर्मन के साथ भी उन्होंने काम किया। देवानंद की फिल्मों में गीत केवल मनोरंजन का हिस्सा नहीं होते थे, बल्कि कहानी और किरदारों की भावनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम भी बनते थे।

1950 और 1960 के दशक में देवानंद ने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें शामिल थे जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, पेनगेस्ट, काला पानी, काला बाजार, 9-2-11, मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने। इन फिल्मों में देवानंद को हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में स्थापित कर दिया था। फिर एक फिल्म आती है, गाइड, देवानंद के करियर की मील का पत्थर है ये फिल्म।

श्रोताओं, देवानंद सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, वो एक सफल निर्देशक भी थे। उन्होंने उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी प्रेम पुजारी, जो 1970 में आई थी। इसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा और देश परदेश जैसी फिल्मों को उन्होंने निर्देशित किया था। उनकी एक खास शैली थी, उनकी एक अलग पहचान थी, अभिनय की शैली थी, तेज संवाद बोलने का अंदाज, चेहरे के भाव, चलने का तरीका और ख़ास तरह का सिर हिलाना, ये सब उनकी पहचान बन गई थी। उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी को देखकर दर्शक उन्हें तुरंत पहचान लेते थे। यही कारण था कि लंबे समय तक उन्हें एवर ग्रीन स्टार कहा जाता था। खास बात यह थी कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ भी उन्होंने खुद को केवल पुराने दौर की भूमिकाओं तक सीमित नहीं किया, वे लगातार नए विषय और नई पीढ़ी के साथ के कलाकारों के साथ काम करते रहे। देवानंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह किया था। दोनों की मुलाकात फिल्मों के दौरान ही हुई थी और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। उनके दो बच्चे थे, सुनील आनंद और देवीना आनंद। कल्पना कार्तिक ने देव आनंद के साथ कई फिल्मों में काम किया था और बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। देवानंद को फिल्म फेयर राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला था काला पानी और गाइड के लिए। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2002 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। देवानंद उन कलाकारों में से थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक फिल्म निर्माण और अभिनय से संबंध बनाए रखा और उनकी अंतिम चार्टशीट थी 2011 में रिलीज हुई फिल्म चार्टशीट, और 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद हिंदी सिनेमा एक लंबे और महत्वपूर्ण अध्याय का अंत हो जाता है, लेकिन ये दौर तो उनकी गीतों का जो सफ़र था वो तो चलता ही रहेगा। उनकी फिल्मों के गीतों को हम आज भी सुनते हैं और आने वाली पीढ़ी भी सुनती रहेगी। तो आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उन्हें उनके ही गीतों के माध्यम से याद

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा शांति, गरिमा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित किया है। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक

इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक अपने नाम किया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। एशियाई खेलों के सातवें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर काबिज है। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है। और श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रही हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ, और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं, पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना।

0: फोन रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति?
1: ठीक है।
0: श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं, बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी।
1: माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो?
0: कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी, सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की

जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी, उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं, जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा। तो एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल। तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता। रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो, रेखा हंसने लगी, जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो। अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो, अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा, इंसानी जिजी विषा। वही तो मैं कह रही हूँ, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है, मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों, रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो सात फेरे लिए जा सकते हैं। जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए

कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी। खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से

0: वह भी लड़के से मिल लेती। ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही। मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूँ, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो? बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी। बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था। क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।
1: अब और नहीं होगा माँ,
0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा। हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूँ। यहाँ 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
2: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भरकर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
3: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।

0: मैटिनी शो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय हमारे स्टूडियो में हैं उदय दहिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जाने माने कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत धन्यवाद यूनुस जी, और विविध भारती जो कि हमारे बचपन से हमने इसको सुना,
1: बिल्कुल,
2: और जब सुनते थे तो कभी सपने में सोचते थे कि क्या हमारी आवाज भी यहाँ पर सुनाई देगी,
1: और आज आ रही है
2: तो एक सपना साकार हो रहा है।
1: जब आपने बचपन का जिक्र किया तो चलिए फिर बचपन में चलते हैं
2: जी।
1: तो कहाँ आपका बचपन बीता था और कैसा था आपका बचपन?
2: बचपन बड़ा मजेदार था। कारण ये है कि पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
1: हाँ,
2: तो अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होते थे,
1: हाँ,
2: तो एक ही शहर नहीं, बहुत सारे शहर,
1: बहुत सारे शहरों वाला बचपन है
2: जी जी।
1: जैसे
2: जैसे मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में,
1: बताओ।
2: फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया भोपाल,
1: तो भोपाल आ गए,
2: फिर भोपाल से ट्रांसफर हो गया रायसेन,
1: लो।
2: तो ऐसे शहर बदलते रहे, ऐसे 5-7 शहरों में बदल के फिर हम लोग, अब नर्मदापुरम हो गया, पहले नाम होता था होशंगाबाद
1: जी।
2: तो उसमें एक कस्बा है, तहसील प्लेस है पिपरिया,
1: हाँ,
2: वहां मेरा ज्यादा लॉन्ग टाइम बीता है।
1: अच्छा, पिपरिया यानी पचमढ़ी जाने के रास्ते वाली
2: जी, बिल्कुल, पचमढ़ी का मुख्य द्वार।
1: क्या बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुंदेलखंड से ताल्लुक है आपका।
2: हाँ जी, बिल्कुल है। क्योंकि बुंदेलखंड में मेरा ननिहाल है।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: कहाँ पर?
2: ये है सतना पन्ना।
1: पन्ना तो टाइगर रिजर्व के लिए
2: टाइगर रिजर्व है, जहां पर हीरे और पन्ने निकलते हैं।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस की दुनिया कहां से शुरू होती है?
2: ये शुरू होती है 1987 में, जब हमारे एक ऐसे कलाकार जो गायक भी, एक्टर भी, कॉमेडियन भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी, तमाम खूबियां जिनके अंदर हैं,
1: किशोर कुमार
2: जी
1: जी जी,
2: तो उस समय वो नहीं रहे थे 1987 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लगातार उनकी फिल्में आती थी। और मैं उस समय कुछ 6वीं 7वीं पढ़ता था
1: जी,
2: तो उनको जब मैं देखता था तो मैं सोचता था यार ये कौन है, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा हम जानते
1: पता
2: नहीं,
1: नहीं होता,
2: बस इतना मालूम था कि कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब मैं उनको देखता, उनकी भाव भंगिमाएं जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, आप स्क्रीन पे उनको देखो तो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका हिलते ही रहता था, कभी एक भांग ऊपर जा रही है, मैं सोचता था कि क्या कर रहे, ऐसा मैं भी कुछ करूंगा कि लोग हंसे और खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
1: वाह वाह वाह।
2: तो वहां से मैं प्रेरित हुआ और फिर मैंने एक विधा सीखी। वैसे मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में गायक बनूं।
1: अच्छा।
2: लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमको अलग से कोई तालीम दी जाए, सिखाया जाए, कहीं भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा एक ऐसी विधा जिसका कहीं कोई स्कूल नहीं होता, और वो है कॉमेडी।
1: बिल्कुल,
2: कॉमेडियन बनाने का कहीं कोई स्कूल नहीं होता।
1: सही है।
2: मतलब आपको एक्टिंग का स्कूल मिल जाएगा, सिंगिंग का मिल जाएगा, डांसिंग का मिल जाएगा, लेकिन कॉमेडी का स्कूल नहीं मिलता।
1: यस,
2: कॉमेडी खुद सीखी जाती है, ये एक लव की तरह सीखी जाती है।
1: बिल्कुल।
2: बहुत सारे द्रोण आपके सामने होते हैं, अलग अलग सीनियर कलाकार, किसी का बोलने का ढंग सीखते हैं हम, किसी से बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी से आवाज का थ्रो सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर ये सीखना शुरू किया, और फिर धीमे धीमे करके मैं मंचों पे आने लगा।
1: क्या बात है।
2: और मैं सबसे पहले मैंने मिमिक्री सीखी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला जो पायदान होता था वो मिमिक्री होता था, किसी की नकल कर लेना।
1: और जिन दिनों की आप बात करें उन दिनों तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
2: नहीं था, बिल्कुल नहीं था।
1: मिमिक्री बहुत होती थी, और मध्य प्रदेश में मिमिक्री के राजा कौन हुआ करते थे?
2: अरे नायकर साहब।
1: जबलपुर के नायकर साहब।
2: जी जी जी। तो बस ऐसे बड़े सीनियर कलाकारों को हम मंचों पर सुनते थे, उनको सुनकर सीखते थे कि कैसे बोलना है, और फिर हमने कुछ अपना भी सीखा, अपना कुछ बनाया। जैसे मैंने कुछ अलग तरह की मिमिक्री सीखी। उस समय टेलीविजन

0: पर महाभारत सीरियल आता था,
1: हाँ हाँ,
0: तो उनके कुछ कलाकारों की आवाज की कॉपी करने लगा।
1: यहाँ से शुरुआत हुई, जैसे भीष्म पितामह
0: करता था मैं, दुर्योधन करता था मैं।
1: अच्छा, कड़क आवाज वाला जो,
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो। लोगों को लगता अरे महाभारत हमारे घर में आता और उसका कलाकार सामने खड़ा है। तो बहुत लोगों का प्यार मिला उससे मुझे।
1: कुछ करके बताएं।
0: जैसे मैं महाभारत का एक सीन आपको सुनाता हूँ जिसमें दुर्योधन कुछ कह रहे हैं और बीच में फिर मुकेश खन्ना भीष्म पितामह को समझाएंगे, तो आप सुनिएगा।
1: जी जी जी।
2: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने भरी सभा में कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसी वक्त उसे बंदी बना लूंगा, समझे?
1: क्या बात है, बिल्कुल पुनीत इसर वाली आवाज है।
0: आप भीष्म पितामह समझा रहे,
1: वो कड़क आवाज
0: वो समझा रहे हैं। कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र, समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन को। अरे कहने से पहले तनिक सोचता भी नहीं है। अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स, तो बताओ क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स?
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से
1: वो जमाना याद आ गया जब
0: बचपना
1: कर्फ्यू लग जाता था।
0: जी जी।
1: रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये स्कूल में आप करने लगे?
0: ये मैं स्कूल में करने लगा था।
1: फिर आगे
0: मैं धीरे से बढ़ा तो अपने शहर से दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
1: लोग
0: शहर
1: बुलाने लगे
0: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में, फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं,
1: हाँ।
0: उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
1: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए?
0: जी बिल्कुल। मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
1: घर से डांट पड़ती थी?
0: हाँ, घर से डांट पड़ती थी, लेकिन
1: पढ़ लिख लो।
0: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
1: अच्छा।
0: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
1: अरे,
0: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
1: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
0: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
1: ये कैसे हो गया,
0: ये कैसे संभव होता है। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में। तो प्रसन्न होते थे बहुत लोग।
1: वाह वाह।
0: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं।
1: हाँ, बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
0: देखिए, मैं अपने मध्य प्रदेश में सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
1: बिल्कुल,
0: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे। कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेज के प्रोग्राम होते थे
1: राज्य स्तरीय,
0: हाँ, तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोचा था आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
1: अच्छा।
0: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
1: अरे बाप,
0: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
1: उन तक आपका नाम पहुंच गया था?
0: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं इस तरह की समितियां कमेटियां होती हैं, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
1: वो अच्छा करते
0: हैं, वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था, मेरी माँ ने, अम्मा जिनको बोलते हैं, उनने फोन उठाया, बोले बेटा वो तो भोपाल गए हैं शो करने, तो कल आएंगे। बोले ठीक है, कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहा है, मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा क्या? आप तो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रुपए बोलता हूँ, मुझे 3,000-4,000 रुपए मिल जाते हैं।
1: तो मेरा इतने ऑनेस्टली बता दिया।
0: हाँ, तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ, और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था,
1: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी

0: चीज थी
1: जी
0: कि उसमें जितने लोग शामिल हुए
1: जी
0: सब जो हैं वो अलग अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
1: जी बिल्कुल,
0: और बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
1: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे
0: बिल्कुल। तो हाँ। जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
1: जी
0: उसमें आप शामिल थे
1: साहब। ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय
0: जी,
1: जिसका मतलब ही होता है आरंभ होना,
0: और आरंभ से आप थे,
1: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था।
0: मतलब आप ही से शुरू हो रहा
1: है? मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
0: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस
1: उसमें? राजू
0: एहसान थे,
1: राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरेशी थे,
0: हाँ।
1: और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
0: गजब गजब
1: तो
0: गजब।
1: ये सारी
0: मजेदार कॉमेडी करते थे वो,
1: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी।
0: गजब। उसको तो लोग बहुत देखा करते थे और लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
1: सच्ची बात।
0: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
1: हाँ,
0: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
1: जी,
0: है ना, जो वो कहां के एहसान भाई,
1: वो मध्य प्रदेश के हैं,
0: सिवनी के
1: हैं।
0: हाँ, तो वो अपनी शैली लेके आए
1: जी। हाँ,
0: आपकी अपनी शैली
1: जी बिल्कुल।
0: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था?
1: नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे, और ना तो हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे
0: जी,
1: क्योंकि था ही उतना।
0: बिल्कुल।
1: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
0: क्या बात है।
1: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
0: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन वन एपिसोड वन आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने
1: वहां पर? ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं। उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए। तो हमने अपना सुनाया, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप।
0: वाह।
1: और ये आपको एक एपिसोड में चार अलग अलग दौर होंगे, पहला, हाँ, दूसरा, तीसरा। तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए, फाइनल में ये सुनाइए।
0: करेक्ट है।
1: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए, और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
0: क्या था वो?
1: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था वो, कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया, और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, और उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको। तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है, बोल रहा कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स आ रहा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर पकड़ लिया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था,
0: हाँ,
1: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के चार स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूं तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है, तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूं, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूं, तो लोग समझते हैं मैं चढ़ रही हूं, धक्का देके ऊपर कर देते हैं। मैं चार स्टेशन से ट्राई कर रही हूं उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
0: कहां से सोचते हैं आप?
1: तो इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
0: अच्छा। लेकिन लगातार जब मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ, और जो अपने कमान के तीर हैं वो तो खर्च होते जा रहे थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो फिर कैसे सस्टेन किया?
1: देखिए एक फसल कटती है तो दूसरी
0: तो आ जाती है।
1: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए।
0: हाँ।
1: और जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
0: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना, 20 साल,
1: 20 वर्ष हो गए।
0: 20 बरस में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी।
1: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूं।

0: 20 साल पहले क्या सुनाया था, ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही सुनाते हैं, कुछ और चलते रहता है,
1: क्योंकि सब बदल गया है,
0: सब जमाना बदल रहा है पूरा।
1: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था?
0: जी बिल्कुल, कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, सब आपस में एंजॉय करते थे।
1: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था, इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
0: बहुत मजे करते थे, मतलब जो वहां नहीं होता था
1: हाँ
0: उसकी बातें चलती थी।
1: अच्छा,
0: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी, और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी।
1: हाँ,
0: तो बहुत मजेदार होता था,
1: एक दूसरे की भी करते थे,
0: एक दूसरे की जैसे करते थे। तो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो, हमारे
1: मानेंगे
0: आप नायकर साहब को सुनते हैं?
1: अरे नायकर साहब हमारे शहर के हैं।
0: तो वो जब बात करते थे बोलते थे, अरे दहिया ये देखो भैया, हमारा तो ऐसा है कि हम जो हैं तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किए और भैया चले गए जबलपुर, ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
1: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी, और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव।
0: जी जी। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
1: अरे वाह क्या बात है, एक कॉमेडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैनी नजर रखना और दुनिया की धड़कनों को पहचानते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
0: जरूर, इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो हाँ। खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है
1: हाँ।
0: मैं स्कूल में जो बच्चे हैं
1: हाँ।
0: और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाए, बहुत दबाव होता है बच्चों
1: बहुत ज्यादा
0: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूँ।
1: अरे गजब।
0: और उनको ये समझाता हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
1: वाह वाह वाह,
0: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
1: कितनी प्यारी बात है।
0: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूं और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूं, उनके स्कूल की बातें करता हूं, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूँ, तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया।
0: जी
1: है ना, और आप मुंबई के हो गए।
0: जी,
1: जिंदगी कितनी बदल गई?
0: जिंदगी बदली तो है लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता है, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: क्या बात है। एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
0: देखिए, काम तो बहुत सारा किया लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोग, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था, पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा।
1: हाँ।
0: लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके? और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
0: जी। पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं,
1: परफॉर्मर नहीं था,
0: और अगर वहां छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे, तो उनको लगा कुछ तो अच्छा कर रहा है।
1: जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने
0: जी,
1: तो वो कैसा मोमेंट था?
0: वो तो अद्भुत था। वो बड़ी मजेदार घटना है। मेरे पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो।
1: जी जी।
0: तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब, बड़े बड़े, और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले, एक दिन मेरे कान में एक आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले, यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? तो बोले, जी सर। दाहिया साहब, ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले, साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले, उनको कभी आते हैं यहाँ? बोले हाँ आते हैं। बोले आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
1: अरे गजब गजब।
0: तो वो मूवमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब कहा।
1: कितनी प्यारी बात है, मतलब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा।
0: बहुत अच्छा लगा
1: कि बेटे ने कोई तो उपलब्धि हासिल की है।
0: जी जी।
1: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है। लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
0: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं।
1: हाँ हाँ।
0: और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूं,
1: हाँ,
0: तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूँ। मैंने परसाई जी को खूब पढ़ा हुआ है।
1: क्या बात है।
0: उनका पूरा जितना भी साहित्य है छह खंड में, वो मेरे पास है।
1: हाँ।
0: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूँ। और एक बड़ी अच्छी चीज ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूँ या जो देखता हूँ वो मुझे याद हो जाता है और बरसों बरस तक याद रहता है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद रहता है, और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूँ।
1: बहुत
0: जैसा मौका आ जाए।
1: क्या बात है।
0: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूँ उनका कि इनकी रचना है ये।
1: हाँ हाँ।
0: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
1: जरूर।
0: ये परसाई जी की, मैं उनकी रचनाएं घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
1: वाह वाह।
0: एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
1: जरूर।
0: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं और आजकल बड़ा मीडिया में छाया भी है। हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं, डॉग के ऊपर बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते हैं, क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला। ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।
1: याद आ गई मुझे ये रचना।
0: तो वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्स लेस कुत्ता है। मैनर्स ही नहीं है, बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्स लेस किसको बोला है? मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है, और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप। हमारा नस्ली कुत्ता? बोले, रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है। अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता, आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो, पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ, तो बोले आपको भी मैं जानता हूं, उसके एक साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही है।
1: क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं वो बहुत तेज होती है
0: जी,
1: बहुत तीखी होती है
0: जी।
1: तो देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म कर दें आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
0: जी जरूर जरूर। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ
1: जी,
0: जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
1: अच्छा।
0: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है, इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
1: ओके।
0: तो ये कहानी है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है, तो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज्यादा चलाता है उसको, और जब ज्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया, बोले डॉक्टर साहब ये सब होश

0: शेयरी के चक्कर में हुआ है। बोले कैसे? बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ कि एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यहीं हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं होशियार आदमी, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर। अब दूसरे छोर को मैंने खंबे से बांध दिया। अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब और मैंने मन में सोचा कि खंबे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊंगा तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का। तो जैसे ही मैंने खंबे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से उठे, मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, अपन बहुत होशियार आदमी है। 5वीं मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे, हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
1: लो भैया,
0: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब। अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो वजन के कारण फट गया, और जैसे ही फटा तो उसी ईंट गिर के हो गई खाली, तो वो हो गया 15 किलो का और मैं 50 किलो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर से सरसराता नीचे आऊंगा, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और सरसराते चले जा रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो वो खाली ड्रम आके मेरे पैर में लगा तो दोनों पैर टूट गए। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, नहीं तो अपने हाथ पैर सब टूट गए, यहां से नीचे गिरे तो साफ ही हो जाएंगे। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता नीचे जाऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो ईंट के ढेर में गिरा। तो मेरी कमर टूट गई डॉक्टर साहब, और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आया तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी।
1: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
0: जी जी,
1: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
0: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं, कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहां जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहां से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया।
1: अरे गजब,
0: 1-1.5 मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
1: वाह वाह वाह।
0: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं, तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया, जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया, जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य

0: रस बनाया। तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
1: वाह।
0: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए, लेकिन अगली लाइन में कहा है दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूं। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
1: वाह वाह।
0: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था, तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्य रस को बिखेर दो।
1: वाह।
0: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूं और अब मैं यहां से उनके हास्य रस को बिखेरूंगा।
1: क्या बात है।
0: तो ये बात जब मैंने वहां कही तो बड़े खुश हो गए वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुनाने देना।
1: वाह वाह वाह वाह। मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का आपने पालन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है, और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व कम है, तो क्या राय है आपकी?
0: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य, एडल्ट फिल्में पहले भी थी, सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन जो अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छा सामाजिक चीजें होती हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, चलती रहती हैं। अब नायकर साहब को देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं, वो पिछले 60-65 सालों से मंचों पे हैं और आज भी हैं वो।
1: बिल्कुल।
0: आज वो 80 प्लस की एज में हैं
1: जी,
0: और अभी भी वो मंचों पर दो दो ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे परफॉर्म कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जो आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूं। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहां बहुत भीड़ हो, वो वहां परफॉर्म नहीं कर पाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा, वो अभिनय की दुनिया का है
0: जी।
1: ये कहां से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
0: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना तो सुविधाएं थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएं, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएं। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है।
1: क्या बात है।
0: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, वो उम्र ऐसी होती है। ज्यादातर लड़कों को यही होता है, वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूं और मैं प्रोग्राम कर रहा हूं।
1: वाह वाह वाह।
0: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था
1: और वो पूरा हुआ।
0: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है। मेरा अपना पूरा हुआ है।
1: जी जी
0: जी। सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
1: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी?
0: जी मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापता गंज किया है।
1: लापता गंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
0: जी जी लापता गंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था। उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
1: वाह वाह वाह।
0: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो हीरो हीरोइन नेपाल के हैं, आर्यन अधिकारी, नीता धुमाना, ये वहां के बड़े स्टार हैं नेपाल के।
1: जी जी।
0: और कुछ एक्टर वहां के थे और कुछ हमारे यहाँ के। तो उसमें राजपाल यादव हैं, दयाशंकर पांडे हैं, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफी। तो वो फिल्म मैंने की है। कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज। ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
1: जी।
0: और इसमें मैं राजपाल यादव और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूँ।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ऐसी कुछ फिल्में की हैं मैंने।
1: कितना डिफरेंट है मंच पर परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
0: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि मंच पे हम करते हैं एकल अभिनय। उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कब खत्म हो रहा है, उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
1: बिल्कुल। तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही
0: हैं।
1: इतनी देर से हम बात करें, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
0: जी बिल्कुल। मैं अभी जो बच्चों को लेकर कुछ सुनाता हूँ तो उसके ऊपर से मैं सुनाता हूँ कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था, घर में कोई आ जाए तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे। बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा मैंने, कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूटकर पॉपकॉर्न बनता है गर्म तवे पर, तो ये उछलता क्यों है? तो बोलता अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाए। तो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसी बातें हैं उनकी कि जो उनका जवाब होता है वो हमारी समझ से बाहर होता है।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जहां अब चारों तरफ कॉमेडी है, लोग पॉडकास्ट में भी कॉमेडी कर रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, टेलीविजन पर कंटेंट है, ओटीटी पर कंटेंट है, तो क्या एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं?
0: हाँ बढ़ तो गई हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पहले अगर एक आधा घंटे का कंटेंट किसी के पास होता था तो बरसों बरस उसको सुनाते रहता था। एक शहर में सुनाया, कल जाके दूसरे शहर में वही सुना दिया, परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहाँ हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह। तो जब हम अगले शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुंचा हुआ होता है। तो वहां जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है,
1: हर बार कुछ
0: तो
1: नया,
0: हमेशा कुछ नया करते रहना
1: पर पड़ता पुरानी है। चीजों की जो लोकप्रिय हो चुकी है उनकी फरमाइशें भी आती हैं।
0: हाँ फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है।
1: आपके लिए किस तरह की फरमाइश आती है?
0: मैं अगर मध्य प्रदेश में हूं तो वहां की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूं, और अगर मैं यहां हूं तो मेरा अपना जो स्टाइल है लोग चाहते हैं कि वो सुनाएं।
1: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें।
0: हाँ क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड, पूरी दुनिया में जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको। तो बुंदेली में वहां के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहां के लोग ही समझ पाते हैं, भाषा का है वो। जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे। अब एक आदमी गया, बोले मैं आई कम इन सर, अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहां से। तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बोले आप तो उनसे भी ज्यादा बात कर रहे हो, यहां उस आदमी की जरूरत है जो कम बात करे। अब ये हमारे यहां का था बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया, बोले क्या पूछा, अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला मुझे अंदर नहीं आने दिया, बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध मुझे भी नहीं आने दिया, अब बोले देखो मैं जा रहा हूं। ये गए, इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए,
1: बोले आ जाओ, दो ही शब्दों में निपटा
0: दिया, दो शब्दों में निपटा दिया, तो बोले आ जाओ तुम्हारी जरूरत थी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: ऐसे
1: बात है?
0: लोकल की भाषा के
1: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा है।
0: जी जी जी,
1: है ना। और कुछ बुंदेली में?
0: बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और

0: बहुत वायरल है
1: जी,
0: थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का है वो
1: जरूर।
0: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उन्हीं उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है, तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ। और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं, और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव-गांव से निकली हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं नहाने स्नान करने, तो ज्यादा आवागमन के साधन नहीं है। एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक 3 पहिए का टेम्पो चलता था जिसमें 15-20 लोगों को वो बिठा के, और वो ड्राइवर ऐसा लटक के चला
1: लंबा वाला।
0: हाँ, तो वो टेम्पो में एक गांव की महिला पहली बार बैठ के नर्मदा जी में स्नान करने जाती है। अब रात को तैयारी शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ जो बच्चों के जो नाम होते हैं वो बड़े गांव के हिसाब से रख देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: शहर जैसे अच्छे नाम नहीं होते, काला देखा तो करिया नाम रख दिया, गोरा देखा तो भूरा रख दिया, थोड़ा हेल्दी देख गया तो लड्डू गोपाल रख दिया। तो उनके बच्चे थोड़ा काला था तो उसका नाम रख दिया था करिया। अब पिताजी को वहां दद्दा बोलते हैं और माँ को बाई बोलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी और करिया की बाई यानी करिया की माँ। अब दोनों की बात चल रही है कल नर्मदा जी नहाने जाना है, तैयारी शुरू हुई है। करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया, अरे करिया की बाई उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लइयो, भुनसारे अपन नर्मदा सपड़ वे चल
1: भुनसारे
0: और सकारू जल्दी उड़ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले।
1: हो
0: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई,
1: निकल गई।
0: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है,
1: बस तो गई,
0: अब का हुई है, बस तो गई। तो अब इनकी बात चल रही है, करिया के दद्दा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चली आ। अब वो आगे कैसे गए वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ।
1: ठीक है,
0: बोले कल का भाई जी करिया के दद्दा कहन लगे कि चल तेरे का नर्मदा सपड़ में धलना तो भाई भंसारे हम उठे बनिंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धरी और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तन चले गए। और वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी। तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है। तो भाई जी करिया के दद्दा मुहे आंगे ले गए भाई वे भाई कैसो टीन को डब्बा सो ठाड़ो बा को आंग ऐसा सुंगरिया जी सोमो। तो मैंने कही काय करिया एक दद्दा जो का जल थे तो वो कहने लगे जा को ना टेम्पू है
1: टेम्पू
0: तो अपन जई से चल हैं आज। तो भाई जी करिया के दद्दा तो उमदा ड्राइवर के बगल में आंगे बैठ गए और मेरे का जब पीछे पटिया में बिठार दई। अब मैं वहां बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम। तो भाई ये कि तो बड़ो करिया से मोड़ा आओ माने बा को ढकना ऊंचो कर दो। और मैं वहां में बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है। तो भाई बाने एक कोप्पा भर के पानी ले आओ और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो। तो मैंने कहा यू मीर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम है। तो भाई बाब करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकारी और बाकी बोनट में ऐसी लपेट दई। ओबर रस्सी लपेट के जीवन बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाकी टायर पे धरो ओबर ड्राइवर से कहन लगो हूं। तो बस ड्राइवर ने भी कह दई हूं। और जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीदवा ने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू होगा। अब वो ऐसो डगमगा रहा हो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जी जी बा ड्राइवर के बगल में एक टीढ़ो सो हैंडल लगो थो बान बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहन लगी जो गेयर है जैसे चला थे जो। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए
1: पलट तो नहीं जाएगा।
0: तो मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहने लगो रोकत नहीं हूं रोक हूं तो पीछे लुढ़क जे। तो मैंने कही फिर लगे जान दे और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
1: अरे दद्दा रे
0: फिर काय की नर्मदा जी जी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।

0: पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से, वो भाषा है, भाषा के लिए क्या लड़ना। मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए, तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो बोली लव कर लव कर, मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला।
1: वो लव कर बोल रही थी,
0: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा आना बहुत जरूरी, सीखना पड़ता है। मैं लोखंडवाला में रहता था, 2005 की बात है, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इतने लोग डूब गए। चार महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे, होर्डिंग वहां पर, उस पे लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा, बाढ़ दिवस का शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार चार महीने पहले लोग डूब के मर गए, ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। तो मैंने कहा यहां रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी। क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला।
1: अच्छा,
0: मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा, तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की, तो अब वो मराठी है, उनको सारी मराठी आती
1: क्या
0: है।
1: उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी करती
0: नहीं है? वो बिल्कुल नहीं है, और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूं, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूं। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं, और घर पे जाके पूछता हूं ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूं।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है, दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे,
1: बिल्कुल
0: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे, अपन अपनी में, ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए,
1: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
0: ऐसा होता नहीं है।
1: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिसनर हैं?
0: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूं
1: और घर में
0: बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूं। बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
1: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
0: बिल्कुल बनाई है,
1: सुनाइए।
0: देखिए मैं,
1: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको?
0: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे हैं मेरा रंग रूप कैसा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली, अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया, उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। तो यहां भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं,
1: लो
0: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर, उसी को देखते जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूं।
1: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा, कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज देख करके वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
0: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं मुंबई नहीं आया था,
1: यस,
0: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था, और मैं कभी सोचता ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं मेरे पास आओ यहां आओ, तो बस काम अच्छे से करते रहो, आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई तुम यहां के लिए नहीं।

0: नहीं हो, तुम कहीं और जाओ, अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए, एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए। जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहां पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत सही सलाह आपने दी है। और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ। तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: वैसे तो किशोर कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है, और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, वो है फिल्म डॉन का। क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूं, जिसका मुझे था इंतजार
1: वो घड़ी आ गई।
0: वाह, तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं वो वाला गाना बजाया जाए।

0: उदय जी, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आगे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने के लिए।
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और समृद्धि नायक। संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
4: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
2: इंतजार कीजिए। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
7: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
6: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
8: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
9: हुआ हूँ।
8: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
6: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी के सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगो जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से

0: सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता, और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea, and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of 77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Poorna Salila Srivastava, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate women's empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara in the late afternoon. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar Ceremony.

0: है। समारोह से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके आवास का दौरा कर शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने बताया कि कल होने वाले इस पारंपरिक महोत्सव का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को देश की राजधानी में प्रदर्शित करना है।
1: झारखंड में हमारे जनजातीय समाज के दो बड़े पर्व होते हैं, एक तो सरहुल, वो भी प्रकृति की पूजा है, और एक करम, ये भी प्रकृति की पूजा। जो प्रकृति की पूजा है, देश जाने कि सरहुल क्या है, करम क्या है, यही समाज प्रकृति को बचाया है, यही समाज जल जंगल जमीन को बचाया है। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, अनलिनों से जूझ रहे हैं, लेकिन ये समाज उसको बचा रहा है।
0: झामुमो सांसद महुआ माझी ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना और वोटिंग अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर

0: अनियमितता है।
1: जो अभी खुलासा हुआ है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, चुनाव आयोग के दो मेंबर्स ने ही, दो सदस्यों ने ही आरोप लगाया है, उनकी जानकारी के बगैर वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या क्या काम कर रहे हैं एसआईआर से रिलेटेड, अब सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे में अगर राहुल जी इस तरह की बात करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? सही कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में जनता से वोट देने का ही अधिकार छीन लिया जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट लिया जाए, तो ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी।
0: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव की योजना को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग में सब कुछ नियम अनुसार हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर हंगामा खड़ा करने का आरोप लगाया है।
2: संविधान के आर्टिकल 324 को देखेंगे और 2023 के इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल नियम कानून से हो रहा है साहब। किसी इलेक्शन कमिश्नर का कोई कोर्ट नहीं है, किसी इलेक्शन कमिश्नर का कहीं रिटन ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी निर्णय पे, एक अखबार की रिपोर्ट पे जो इस तरीके का हंगामा मचा वो तो बड़ा आश्चर्यजनक है। तो आज जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इनको दरअसल ना बांग्लादेशियों से मेजर प्रॉब्लम है।
0: कोडरमा जंक्शन पहुंचे रेल आईजी अमरेश कुमार ने स्टेशन की सुरक्षा और निर्माणाधीन आरपीएफ बैरक का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेनों में नशा तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्कैनर लगाने की आवश्यकता बताई। आईजी ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय जिला पुलिस को बेहतर तालमेल के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्देश दिया।
3: यहाँ पर काफी अच्छा सतर्क है लोग, इसमें जो है ये सारी एजेंसियों को मिलकर काम करना है। इस पर काफी अच्छा पहले से जो है इसमें काम भी हुआ है और आगे भी इसमें सतर्कता की हमें बताया हुआ है और छिटपुट घटनाएं जो हो रही है उनमें भी रिसीवर को लोगों ने पकड़ा है और घर तक पहुँचाने में लगे हुए हो जाए ताकि फर्दर आगे क्राइम पर जो है वो यहाँ समाप्त हो जाए। कैमरा जो है फॉरेस्ट के लिए जैसा आपने कहा है,
4: स्टेशन बहुत सारे नए आ रहे हैं।
0: आईजी ने कोडरमा पोस्ट पर तैनात बल के जवानों को यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन चुका है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अभियान राज्य के गांवों से लेकर शहरों तक जन आंदोलन बन चुका है। राज्य के 91% से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, जहां ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम जारी है। स्वच्छता को नागरिक संस्कार बनाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
6: देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किए गए, देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है।
5: प्रधानमंत्री के इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए झारखंड का लोहरदगा जिला आज देश के सामने एक मिसाल बनकर उभरा है। ठोस कचरा प्रबंधन, हर घर शौचालय और जल संरक्षण के निरंतर प्रयासों से ये जिला अब खुले में शौच से

0: मुक्त हो चुका है। इस बदलाव से लाभान्वित यहाँ के स्थानीय निवासी अरशद अंसारी और मोहित राय का अनुभव वाकई प्रेरणादायी है।
1: हमारा नाम हुआ अरशद अंसारी। हमारे गांव है हिस्सल। हमारे गांव में शौचालय नहीं था। शौचालय सरकार के द्वारा बना, सबका घर में शौचालय है। सरकार के योजना का हम लोग लाभ उठा रहे हैं।
2: मेरा नाम मोहित राय है। लोहरदगा जिला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर काम किए गए हैं। लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। लोहरदगा जिला खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है। बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है।
0: लोहरदगा से उठी स्वच्छता की ये गूंज इस बात का प्रमाण है कि जब सरकारी नीतियां जन भागीदारी से मिलती हैं तो बड़े बदलाव आते हैं। जनसेवा से देश सेवा का ये सफर आज ग्रामीण भारत की तकदीर बदल रहा है, जो साल 2047 तक एक सशक्त और आत्मविश्वासी विकसित भारत के निर्माण की राह को और मजबूत करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए लोहरदगा से गोपी कृष्ण कुंवर के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
3: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,44,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में लगातार चौथे दिन जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राजधानी रांची में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि पेड़ और बिजली के पोल गिरने से कल रात से ही कई मोहल्लों में ब्लैक आउट है। जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में भारत की महिला कबड्डी टीम ने रोमांचक फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 37 से हरा कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम ने देश को इन खेलों का तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले महिला क्रिकेट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण जीता था। आज पुरुषों के फाइनल में भी भारत का मुकाबला ईरान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की आंगन मिलन सेवा अभियान की शुरुआत। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ने की अपील की। आंगनबाड़ी दीदियों के प्रति जताया आभार। झारखंड की समृद्ध संस्कृति की गवाह बनेगी देश की राजधानी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के दिल्ली आवास पर कल आयोजित होगा करम महोत्सव। चुनाव आयोग के कामकाज पर झामुमो सांसद महुआ माझी ने उठाए सवाल। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। रेल आईजी ने कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा का लिया जायजा। नशा तस्करी पर लगाम के लिए स्कैनर लगाने के दिए निर्देश। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रोमांचक फाइनल में ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक। आज पुरुष टीम का भी ईरान से मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढले। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो, अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया, तो दिल ने कहा भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूँ यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहां एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच जाता है लेकिन वहां उसके साथ उसका वो खास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा, तो ठीक है सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फार्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी, तो ठीक है कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है, तुम दूर जाने की बात करते हो जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़ कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी जिंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज़्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियाँ, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी खत्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, और आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश।

अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहां एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत खास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते

आते हैं, मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आ जा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आ जा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

देश भेज रहे हैं, एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर। तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, दो दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, बिस्वजीत

उर्मिला टैगोर मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले। इससे जुड़ा गुजराती भजन है एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो, तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं, पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखान तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं, और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं, इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं, और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड। और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: Under which hostilities would end on all fronts, while the United States would lift its blockade on Iranian ports, release frozen Iranian funds, and waive oil sanctions. The Strait of Hormuz would then be reopened as per this proposal. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on his birth anniversary. In the social media post, Mr. Modi said, "Dr. Singh spent many years in public life and served the nation with dedication." Union Home Minister Amit Shah today paid tribute to a great pillar of the Bengal Renaissance, Ishwar Chandra Vidyasagar, on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said, "Vidyasagar made education a powerful medium of social change." Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate women empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri. Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh launched 5 new popular science magazines in Tamil, Telugu, Marathi, Bengali and Assamese on the occasion of the 85th Foundation Day of the Council of Scientific and Industrial Research, or CSIR. The magazines were published by the CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research. The ministry said that the release of the magazines mark an important expansion of CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research's popular science publishing portfolio. India has made a strong medal haul at the Aichi Nagoya Asian Games today, adding 4 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. The latest results have taken India's overall medal tally to 27. A report.
1: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal, defeating Iran 37-34 in a closely contested final. Captain Pushpa Rana led India to victory. In athletics, Savan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilotama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Chokse secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर हॉर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
3: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए

0: तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए

0: मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केओंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

0: भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
0: मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने AI से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में AI विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है 16वां साल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
3: और
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम MMDR अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश भर में समान व्यवस्था कायम होगी और पारदर्शिता आएगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड को छोड़ सभी राज्यों ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खान और खनिजों की नीलामी में कोई रुचि नहीं दिखा रही है।
3: कोयला चोरी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस MMDR संशोधन बिल का विरोध कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि सरकार के खजाने में पैसा न आए, सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त न हो, सरकारी संस्थाएं मजबूत न हो, अवैध तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है।
2: प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू आज रांची में मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर उनकी बेटी के निधन पर दुख जताया और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद थे। राज्य में SIR के तहत फॉर्म 6, फॉर्म 6 ए, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित है। इच्छुक लोगों के पास मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को निपटाने के लिए अब मात्र

0: चार दिन शेष हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक फॉर्म 6 के माध्यम से 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए वोटरों ने कल भी 7,000 से अधिक प्रपत्र जमा किए। राज्य में अब तक 4 लाख से अधिक फॉर्म 8 भी जमा किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि SIR के तहत 19 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। सिमडेगा पुलिस का ऑपरेशन विश्वास लोगों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आया है। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों के जरिए 63 चोरी हुए और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा आदित्यपुर में आज वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान PIB रांची तथा भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस कार्यशाला के दौरान पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर लंबी चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में अपने आवास पर कल आयोजित होने वाले करम मिलन समारोह की तैयारियों की जानकारी दी है। समारोह से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके आवास का दौरा कर शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने बताया कि कल होने वाले इस पारंपरिक महोत्सव का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को देश की राजधानी में प्रदर्शित करना है। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित मां कौलेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अब पूजा करने के लिए फूल की कमी नहीं होगी। उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीणा ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ की तलहटी में फूलों की बगिया विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में देवघर जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इधर दुमका जिले में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से मसानजोर डैम और सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: दुमका जिले में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मसानजोर डैम का जल स्तर 24 घंटे में 2 फीट से भी ज्यादा बढ़कर 388.80 फीट तक पहुंच गया है। डैम का एक हाई लेवल गेट खोल दिया गया है। वहीं भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने सतर्कता बरतने और संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में भारत की महिला कबड्डी टीम ने रोमांचक मुकाबले में ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम ने देश को इन खेलों का 30वां स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले महिला क्रिकेट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण जीता था। आज पुरुषों के फाइनल में भी भारत का मुकाबला ईरान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा,
2: बेनीपट्टी मधुबनी बिहार।

कुमार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी। करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश। एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नवसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदाराज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत। मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मुसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या करेगी? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। लाहौल वाला
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: अल्लाह मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार। ए मैं मर गई। अल्लाह
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे

0: अरे कमरे में क्यों भेजा था?
1: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
0: हमारे पैरों में क्या हो गया?
1: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
0: हमारे पैरों में दर्द नहीं
1: सरकार।
0: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
1: सरकार।
0: अब जाती है कि
1: मुझे ना निकालिए सरकार।
0: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
1: मेरे अच्छे सरकार।
0: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
1: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
0: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
1: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
0: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है। हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
1: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
0: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
1: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
0: कैसर नवाब?
1: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रही हूँ।
0: मगर ये नहीं हो सकता।
1: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
0: नहीं ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
1: उनके हुक्म से तो नया बूबू ने मुझे भेजा है।
0: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
1: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
0: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
1: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बूबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
0: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
1: हाँ सरकार, बूबू मुझसे खफा नहीं क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
0: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
1: नया बूबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
0: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
1: मेरे नवाब।
0: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
1: छोटे सरकार।
0: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
1: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और समंगिया, अरे भाई क्या हाल चाल है?
3: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अमा यार क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
3: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अमा अमा ये क्या किस्सा है?
3: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
3: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
3: मैं इसे बदकारी समझता
2: हूँ। ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
3: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
2: अमा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
3: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
3: ये घर कुछ पागलखाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
2: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
3: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
3: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
3: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छम्मन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
3: اولاد نرینا شادی کے بعد ہی پیدا ہوگی۔
2: مگر باندی سے کیوں بھی رکھتے ہو، شادی وقت آئے گا ہو جائے گی۔
3: اور باندی؟
2: باندی کام آئے گی۔
3: اور حرما خانم برداشت۔

0: करेंगे।
1: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म रिवाज को नहीं समझती हैं।
0: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज न होगा?
1: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
0: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
1: अमां अजीब हवनक आदमी हो।
0: अगर कोई औरत अपने मियां की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शौहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
1: ला हौल वला कुव्वत। मियां तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
0: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
1: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
0: जब्बार, अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
1: तो एक काम करो साहबजादे।
0: क्या?
1: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
0: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
2: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
0: हलीमा,
2: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती है।
0: नहीं
2: तो...
0: हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई। हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
2: मेरे अच्छे नवाब।
0: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो। तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा, रहम करो हलीमा।
2: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल ऐसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
0: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
2: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
0: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
2: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुझसे नहीं निकालिएगा। याद नहीं सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
0: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
2: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
0: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
2: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मिराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
0: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
2: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
0: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
2: मगर हूँ आपकी।
0: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
2: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
0: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितना सर्द हो रहे हैं।
2: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
0: हलीमा हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा हलीमा।
3: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गए, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
4: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
3: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम?
4: हाँ बेगम, भला इन आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
3: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
4: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी कि साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
3: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
0: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
2: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?

0: जल्दी आ जाऊं।
1: कितनी जल्दी?
0: थोड़े दिनों बाद।
1: कितने होते हैं थोड़े दिन?
0: यही कुछ 6-7 महीने।
1: 6-7 महीने?
0: आहिस्ता बोलो,
1: हम मर जाएंगे।
0: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा पूरी फालमू से निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
1: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
0: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोवर की और बात थी। बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
1: बच्चा?
0: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
1: मेरे सर की कसम खा,
0: नहीं अल्लाह नहीं।
1: हलीमा तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
0: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
1: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा
0: जी।
1: बच्चा कब तक होगा?
0: 6 महीने बाद।
1: अगर रोएगा तो हम बाजी को बहुत डांटेंगे।
0: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
1: तुम गांव नहीं जाओगी।
0: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार,
1: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
0: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
1: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
0: सरकार।
1: शट अप।
2: घोड़े बचिए हशमत नवाब,
3: ये लीजिए।
2: ये शह वो मारा।
1: भाईजान मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
3: अम्मा इस वक्त बड़े जोर की बाती जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
1: भाईजान
3: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
2: शह हजमत नवाब शह।
1: उफ प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
3: उफ कहो क्या कहना चाहते हो।
1: जरा मैं
3: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता?
1: भाईजान
3: अम्मा कह भी चुको,
1: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
2: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
1: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
2: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है अम्मा, उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
3: अफजल भाई अच्छा जाने दो, आगे चलो।
1: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा
3: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
1: वो गाय भैंस नहीं, वो
2: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
1: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
3: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
2: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
1: भाई जान
2: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
1: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
3: बहुत खूब, वो कब?
1: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
3: और निकाह? काजी कौन था?
1: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
2: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
3: जाओ मियां क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, हाँ भाई। दूसरी बाजी जमाए, ला हौल वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
1: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
2: जमन मियां तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
1: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
3: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दबा हो जाओ यहां से।
1: भाई जान मैं
3: बदतमीज।
2: अरे अरे ये क्या करते हो हशमत मियां?
3: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई?
2: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
4: बेगम साहिबा एक बात तो हूँ।
5: कह भी चुको क्या कह रही हो।
4: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
5: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी। अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए।
4: फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है।
5: हाँ हाँ खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
4: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतू न ले जाएंगी?
5: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा।
4: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
5: अय है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारों पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई?
4: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं। मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं?
5: ऐ बुआ, तो कुछ मुंह से फूटो तो।
4: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
5: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
4: जो हुक्म सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो?

0: कि दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
1: कभी सोचती हूँ नायाब, तुम न होती तो।
0: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
1: जरी खासदान आगे बढ़ा।
0: लीजिए हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती है।
1: अच्छा दिखा लाओ।
0: अभी मतन तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
2: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
0: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया।
2: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
0: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
2: क्या है?
0: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
2: क्यों?
0: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
2: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
0: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
2: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
0: जी जी हाँ।
2: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
0: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक। ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा ये, हाँ लाकेट।
2: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
0: है? हाय हाय रानी बिटिया, क्या फरमा रही हैं आप?
2: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
0: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधे है।
2: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना।
0: बच्चा? कैसा बच्चा?
2: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
0: ए बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांधिया इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
2: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
0: ए बिटिया आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाब जाते हैं, मगर वो लौंडे बांधी तो जी का बेलावा होती है, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
2: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
0: और क्या बिटिया रानी,
2: हशमत भाई की तो एक बांधी थी, क्या नाम था, सनोबर।
0: ये वो रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
2: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू?
0: शौक से पूछिए, मगर वो
2: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
0: हाय हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं?
2: क्यों, अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
0: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रही है, वो होती तो मजाल न थी जो यू मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान, ये गत भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
2: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
0: बस बीवी बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
2: आय हाय बुब्बू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
0: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरे साथ पुश्तों को कहा।
1: ओहो नायाब आई है, चली कहाँ, क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
0: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं, खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बम्बई से बनकर आएंगे।
1: नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है, समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
0: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
1: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
0: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बावा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
1: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
0: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम, नौच यू कोई शर्म हया बेच खाए। तो क्या आज करूं बेगम से जाके?
1: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: कुद्दूस भाई आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे?
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्लाह क्या पटाखा है
4: कमीने।

0: आदि छमन होश में आओ, क्या पागल हो गया?
1: हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूं, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहां से।
0: हलीमा
1: हलीमा।
2: जी सरकार।
1: कौन सरवरी?
2: जी।
1: तुम यहाँ क्या कर रही है?
2: आपके पायजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है? कुर्ते में लगा दो।
1: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
2: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हमाम में पानी तैयार है।
1: हलीमा कहाँ है?
2: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।
1: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
2: अल्लाह हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
1: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी। चल भाग।
2: हम नहीं जाते।
1: कहाँ है हलीमा बता।
2: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
1: बता, नहीं बताएगी?
2: बताती हूँ।
1: बोल।
2: वो उधर शागिर्द पेशे में।
1: क्यों?
2: वो उसका जी अच्छा नहीं है। इन्हें खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
1: फरखुंदाबाजी।
2: अरे छमन मिया, क्या पैदल भागे चले आप?
1: साइकिल पर। फरखुंदाबाजी वो मर रही है।
2: अहे कौन?
1: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
2: ठहरो,
1: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
2: नहीं मिया, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं। बुबू, नायक बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है।
3: अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
2: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
3: ये क्या किस्सा है नायाब?
2: लॉरी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
3: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत। लीजिए वो आ गई।
2: तस्लीम मानी जान।
3: जियो, ये मुझे अस्पताल की लॉरी क्यों आई है?
2: हलीमा को लेने।
3: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
2: इस वक्त बहस न कीजिए, पैलोठी का बच्चा है, अगर
3: तुम्हारी बला से। तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
2: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
3: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
2: मुझे मजबूर न कीजिए मुमानी जान।
3: क्या मतलब?
2: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
3: पुलिस?
2: इंशाल्लाह।
3: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
2: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
1: नहीं, मैं उठा लूंगा।
2: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
4: ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
1: चुप रहो बेवकूफ।
2: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो।
1: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
5: ये क्या हो रहा है?
2: आदा मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
5: हमसे पूछे बगैर?
1: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
5: मर जाने दो
1: अब्बा हुजूर।
5: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
1: नहीं,
5: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे कुछ ताकत कर रहे हो बेशर्म?
1: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
5: क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
1: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
5: तुम्हारे इतने दिमाग?
3: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
1: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
3: अरे कहाँ जा रहा है छमन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
1: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
3: ना जाओ मेरे लाल।
1: खुदा।
3: ना जाओ मेरे लाल छमन।
5: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएगी।
3: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, मैं उसे जानती हूँ। ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
2: नहीं बुबू, कैसे हैं छमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
6: मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
3: अरे अब दम बाद में लेना,
7: पहले बताओ बच्चा कैसा है?
6: अरे बेगम बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत है।
7: घर बार कैसा है?
6: अरे बेगम कुर्बान जाऊं ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है, बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी कि उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छम्मन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
7: या अल्लाह खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
8: नाट्य तरंग में अभी आप इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हिमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
9: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
10: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
9: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
11: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
9: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
12: तुम्हारी याद सताती है
9: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है
2: जी।

0: बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब?
1: हाँ हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
0: जी,
1: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
0: जी बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स
0: जी,
1: नहीं कहती
0: जी।
1: वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब। तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया
0: जी
1: करते थे,
0: जी
1: जागीरदार जी बोले, साहब जी ये ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
0: जी
1: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया।
0: अच्छा।
1: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं। तो बोले गाओगी, कहा। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, मुझे हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
0: जी
1: था।
0: जी
1: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आया इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
0: बिल्कुल।
1: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था
0: हाँ,
1: उनके लिए, इतना कहना ही
0: बहुत
1: काफी था।
0: बड़ी बात।
1: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है,
0: कम है। जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
0: सीखा।
1: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी,
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
0: जी
1: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो
0: अच्छा।
1: दिलीप साहब के साथ खेलते
0: हाँ
1: थे
0: हाँ
1: टेनिस।
0: हाँ
1: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, पर इस बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई,
0: जी
1: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और करते करते 10 बज गए,
0: रात की।
1: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
0: जी
1: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइन्स हैं, तो क्या तुम गाना पसंद

0: करोगे?
1: अरे
0: तो
1: जी
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आईना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त बिल्कुल आखिर आखिर में, सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता हूँ, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी, इतना ही था बस।
1: जी
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
1: जी जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे, तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी,
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं बंदा के निजी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो पता अच्छा। है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले, मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी, जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बुलब पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूं।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: थी।
1: बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन

0: लिया जाए जिसमें आपने अपनी आवाज दी
1: तेरा
0: हो।
1: मुझसे है पहले का
0: नाता कोई, थोड़ा सा गाएंगी
1: बिल्कुल,
0: तो हमें भी अच्छा
1: बिल्कुल।
0: लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी हा?
0: जी
1: गला बंद है पर कोशिश
0: जी
1: करूंगी।
0: बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
0: वाह
1: तेरा मुझसे है पहले।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचमदा ने सिखाया, पता है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो, शर्मिला जी कैसे बोलती हैं, मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बोले यही चाहिए मुझे। हाँ आगे क्या है डैडी, हाँ, मैं तो भूल ही गया, मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी,
1: आज
0: जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना, तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है, कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी,
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी,
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी,
1: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए है, प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वही फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे,
0: अच्छा,
1: और फिर ओवर टाइम, तो वही सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी,
1: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
0: वो गाएगी,
1: हाँ बोले गाएगी गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वो ही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
0: जी
1: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
0: सूट करती है,
1: इस करके ये गाना मुझे मिला।
0: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं, आपकी पसंद का बताइए, तेरा मुझसे है पहले का नाता,
1: बिल्कुल
0: आप ही का गाया हुआ सुन
1: जी।

0: मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी,
0: लोगों
1: जी,
0: ने
1: जी।
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा,

0: बुलाना तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तो आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदा, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये न और सॉफ्ट, उसी को बुलाना तो आ जा आ जा।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधार का
0: सीखा
1: जी, ये पंचम धाम में ही
0: या
1: ये गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझ से
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहां कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है,
0: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है।
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
0: हाँ,
1: प्यार मिला, स्नेह मिला,
0: बहुत
1: उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके,
0: ना
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हा,
0: थी
1: हा, हा,
0: है ना
1: जी,
0: बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: वाह
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना है।
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना?
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है।
1: हाँ।

0: हाँ बिल्कुल जी
1: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए
0: जी
1: मिस्टर
0: बिल्कुल
1: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
0: कोल्हापुरी
1: कोल्हापुरी।
0: ने जी
1: लेकिन इसके

0: वो इनके ये स्टाइल मैंने पंचमदास से
1: जी
0: सीखी,
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा रा, आप समझे,
1: वो खुद भी ऐसे ही गा
0: हाँ
1: देते हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: डा रा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा,
1: ओहो,
0: तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में

0: वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा मेरा चॉइस रहा
1: जी
0: है।
1: जी
0: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती थी। और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे।

0: सर प्लीज, आप तो आए, आप ही की फिल्म है, एक एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है क्या गाती है, कर दो ना कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
1: जी
0: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
1: अरे
0: पर उनके उनका बड़प्पन देखिए, ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ। मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस के, अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे। हाँ, इवन रिकॉर्डिंग्स में वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या बात है।
0: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी
0: नम्रता, ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
0: वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम

0: अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बाप्पी दा

0: जो तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे हाँ,
1: हाँ
0: इवन
1: हाँ
0: रिकॉर्डिंग्स में।
1: हाँ
0: वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या
0: उस,
1: बात है,
0: वहां मैंने ये एक और मैं
1: सबक
0: बहुत नोट
1: सीखा
0: करती थी ये
1: जी
0: सब
1: जी
0: बातें,
1: ये नम्रता
0: कि ये
1: विनम्रता
0: नम्रता होना, अपनी कमजोरी को
1: समझ
0: समझना,
1: देना
0: जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा
0: बिल्कुल
1: रहा हो उसको
0: बिल्कुल।
1: अप्रिशिएट करते हुए
0: और वही बात
1: तो
0: इस गाने में
1: जी
0: भी हुई
1: जी
0: कि मुकेश चंद्र वो तरम पर।
1: तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म
0: जी
1: अंकुश
0: जी
1: की,
0: जी
1: इतनी शक्ति हमें देना
0: जी
1: दाता, ये
0: जी
1: आपका शायद अंतिम गाना था।
0: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
1: जी जी
0: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
1: जी
0: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
1: जी शिवांगी
0: जो
1: दीदी
0: शक्ति कपूर जी की बीवी
1: बीवी है,
0: और श्रद्धा
1: पद्मिनी जी की
0: कपूर
1: बहन
0: के,
1: है,
0: और
1: हाँ
0: श्रद्धा कपूर की
1: मम्मी
0: माँ,
1: है, हाँ
0: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी।
1: जी
0: मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के

0: आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले। आज मैं मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे। साजिद के साथ, उनके पोते के साथ काम
1: जी,
0: किया
1: जी,
0: इतनी मतलब
1: बड़ी बात है और
0: मैं
1: ताउम्र याद रहने वाली बात।
0: और ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं

गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आप

0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: वो
0: थी,
1: पुष्पा जी की ही
0: है ना।
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
1: जी मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है,
0: तब मैं आपको
1: जी
0: बताऊंगी
1: मेरा ही
0: कि
1: सवाल
0: क्या
1: है।
0: फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना
1: जी जी
0: वो बंद
1: जी
0: हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, आप प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा,
1: जी
0: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा
1: जी
0: लिया। मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं,
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए,
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ, वो
0: पहचान,
1: स्थान।
0: वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने।
0: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
1: जी
0: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
1: जी शिवांगी
0: जो
1: दीदी
0: शक्ति कपूर जी की बीवी
1: बीवी है,
0: और श्रद्धा
1: पद्मिनी जी की
0: कपूर,
1: बहन है,
0: और
1: हाँ
0: श्रद्धा कपूर की
1: मम्मी
0: माँ,
1: है। हाँ
0: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूं, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी,
1: जी
0: मैं जहां जाती हूं मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स, हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी
1: और
0: जी।
1: उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती
0: और
1: हैं।
0: नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं।

0: आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले। आज मैं मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे। साजिद के साथ, उनके पोते के साथ काम
1: जी,
0: किया
1: जी,
0: इतनी मतलब
1: बड़ी बात है और
0: मैं
1: ताउम्र याद रहने वाली बात
0: और
1: है।
0: ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति हमने सोचा ही नहीं था। मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आप,

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अन्नपूर्णा देवी ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम MMDR अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश भर में समान व्यवस्था कायम होगी और पारदर्शिता आएगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड को छोड़ सभी राज्यों ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खान और खनिजों की नीलामी में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने SIR के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि पार्टी द्वारा 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा और निर्वाचन आयोग का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी का मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने गढ़वा जिले के टंडवा में आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि इस केंद्र के खुलने से आधार से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसद ने केंद्र से जुड़े कर्मियों से प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। चतरा जिले के इको पार्क में करीब 35 लाख रुपए की लागत से बटरफ्लाई जोन विकसित किया जा रहा है। दक्षिणी वन प्रमंडल चतरा के DFO मुकेश कुमार ने बताया कि इस जोन में विभिन्न प्रकार की 50 से अधिक प्रजातियों की तितलियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ उनका प्रजनन भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर बटरफ्लाई जोन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

वो इश्क ही क्या जो परवान न चढ़े, वो घटा ही क्या जो आसमान न चढ़े, बीते सदियां बीते जमाना लेकिन वो हुस्न ही क्या जो किसी का अरमान न बने। तुम मुझे भूल भी जाओ मगर हम याद रखेंगे, छोड़ देंगे दुनिया अगर मेरा इश्क ही मेरी पहचान न बने।

तन्हाई की इस घड़ी में मेरा कोई नहीं है। याद आते हो तुम बेसबब आज मुझे इस तरह। भटकता फिर रहा हूँ इस अनजान शहर में, डेरा कोई नहीं है। पुकारता हूँ तेरे

0: आप सुन रहे हैं छाया की। यूं तो देखा नहीं है पहले कभी, पर लगता कोई गहरा नाता है। एक झलक में कोई कहां दिल को इतना भाता है। है कोई बात जरूर तेरी आंखों के चमक में, तेरी एक नजर से रोशन दिल मेरा हुआ जाता है। फेर के नजर यूं न जाओ मुझसे दूर, इस बात से ही दिल मेरा घबराता बहुत है।
1: तेरा मुझे

मिले थे तुमसे न जाने कब पहली बार, यकीन यही है कि हो गया था तब भी तुमसे प्यार। दिन तेरे बिन जो बीते वो क्या खाक दिन थे, अब तुम जो मिले हो तो आया दिल को भी करार। कहता ना था मैं तुमसे कि हम पहले भी मिले हैं, न जाने कितने जन्म में, न जाने कब और कितनी बार।

आखिर मिल ही गए दिल हमारे, तेरी नजरों में ही चांद की रंगत को निहारें। क्या जिंदगानी थी और अब क्या होने लगी है, मेरी चाहत तेरी बाहों में अब खोने लगी है। मुझको तो पहले से मोहब्बत रही तुमसे, अब थोड़ी थोड़ी तुमको भी खोने लगी है।

0: छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आपका सायंकालीन सभा में। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और स्टूडियो की घड़ी में 5:33 हो चुके हैं। तो श्रोता आइए हम आपको बता दें अभी से लेकर 11:10 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जी, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी, जिसके तहत आप हमारे वार्ता में सुनेंगे नदियों को साफ रखना हमारा कर्तव्य। वार्ताकार होंगे दृष्टि सिंह। साथ ही साथ 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 6:30 पर कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। और आज के ग्रामीण सभा कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे अरहर में कीट प्रबंधन आज की बात का विषय है, कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है उद्यान एवं वानिकी। भेंट करता है संतोष कुमार। और साथ ही साथ 7:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का 7:10 पर जिले में आजकल, और इसका प्रसारण हम करेंगे अपने राज्य केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे गीत गजलों का कार्यक्रम शोरांजलि। और आज के कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह, जिसका प्रसारण हम करेंगे अपने डाल्टनगंज केंद्र से। शाम 7:45 पर विज्ञान जगत, आज का शीर्षक है हमारा भारत का अंतरिक्ष और उसका अवलोकन, संकलन और वाचन मीनाक्षी कर्ण का। रात 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपट से। रात 8:30 पर विविध

त्रि फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष, इसका प्रसारण हम करेंगे अपने डाल्टन केंद्र से ही और 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे का समय होगा अंग्रेजी में समाचार और उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे 9:15 पर, जिसका प्रसारण हम करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम और 10 बजे हम आपको ले चलेंगे विशेष कार्यक्रम के तहत 20 एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026, इसकी प्रतिदिन की हाईलाइट हम आपको सुनवाएंगे और 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, जिसका प्रसारण हम करेंगे अपने डाल्टनगंज केंद्र से ही। 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण हम करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से ही और 11:10 पर आज की सभा का समापन करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे अभी से लेकर 11:10 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 5:35 हो चुके हैं, तो आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी। आज के युवानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए सुनते हैं श्रोताओं, नदियों को साफ रखना हमारा कर्तव्य, इस विषय पर वार्ताकार है हमारे दृष्टि सिंह।

नदियों में बढ़ते प्रदूषण से हम सभी भली भांति परिचित हैं। जल प्रदूषण, विशेषकर नदी प्रदूषण के भविष्य की कल्पना करना अत्यंत हृदय विदायक है। प्राचीन काल में नदियों में विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विपरीत आज नदियों स्वयं विभिन्न मानवीय गतिविधियों से प्रभावित। नदियों में बढ़ती हुई गंदगी अब चिंता का विषय बन चुकी है। नदियों के महत्व को मनुष्य अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो बिल्कुल नमकीन है। यह पानी पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% जल पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% पानी ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है। इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हिसाब से हम नदियों का संरक्षण कर सकते हैं। नदियों में प्रत्येक दिन डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का पानी, कचरा जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी शुद्ध जल के लिए तरस जाएगी। इससे पानी गंदा और जहरीला हो रहा है। जलाशयों में रहने वाले जीव, मछली, पानी के अंदर पेड़ पौधे सब मर जाते हैं। प्रत्येक दिन इतने अधिक रसायन के कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए नदियों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। नदियों को स्वच्छ रखना मनुष्य का कर्तव्य है। यह सबको मिलकर करना होगा। नदियों के निकट रहने वाले लोग नदियों को गंदा कर रहे हैं। अक्सर गांव में लोग नदियों अथवा तालाबों में अपने निजी गतिविधियों को करते हुए पाए जाते हैं। इन्हीं सब वजहों से नदियों का पानी अस्वच्छ हो रहा है। यह गतिविधियां हैं जैसे कपड़े धोना, पशुओं को स्नान इत्यादि। इन सभी कार्यों की वजह से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। कल कारखानों से निकलता हुआ कचरा नदियों के जल में प्रवाहित किया जा रहा है। इससे नदियों का जल बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। हम नदियों के जल सैलाब से खुद डरते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से घबराते हैं और खुद ही प्रलय ला रहे हैं। मनुष्य वर्षों से औद्योगिक उन्नति के लिए प्रकृति और नदियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने भारत की नदियों को साफ करने के लिए कई योजनाएं और परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है। नमामि गंगे और नमामि देवी नर्मदे कुछ उदाहरण है, जो भारत के नदियों को साफ करने के उद्देश्य से शुरू किए गए। सरकार को कचरे के पूर्ण चक्रण के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाने चाहिए। प्लास्टिक जैसे कचरे को जल निकायों में फेंकने के बजाय पुनः उपयोग किया जा सकता है। औद्योगिकरण सभी पहलुओं में बुरा नहीं है, लेकिन उचित अपशिष्ट प्रबंधन को लागू किया जाना चाहिए। इसलिए नदियां हमारी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए हमें इसकी शुद्धता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व स्तर पर ताजे पानी की कमी का सामना कर रहे होंगे। नदियों को

0: स्वच्छ रखने के उपाय। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम नदी में मिलने वाले नालों को बंद करना चाहिए। तटों पर निर्मित उद्योग से नदी में मिलने वाले रासायनिक पदार्थों पर पूरी तरह पाबंदी लगानी चाहिए। साथ ही शहरों में जल शुद्धिकरण संयंत्रों का उपयोग होना चाहिए, जिससे नदी में साफ जल ही पहुंचे। नदियों को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कानूनों और नियमों का भी निर्माण किया गया है। इन नियमों को बारे में गांव, शहरों और कल कारखानों को इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए NGT नियमों का पालन हो, देश की नदी नीति घोषित की जाए, पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं देश और प्रदेश स्तर की समितियां बनाई जाए जो नदी परियोजनाओं के नियम में सहयोग दें। भारत की नदियां मुख्य रूप से वर्षा से पोषित होती हैं, तो वे साल भर यहाँ तक कि सूखे मौसमों में भी कैसे बहती हैं। वनों के कारण बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी 12 माह नदियां बहती हैं। इसमें पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को छेददार बना देती हैं, जिससे वह बारिश के पानी सोख लेती है और उसे थाम कर रखती है। मिट्टी में मौजूद यह जल साल भर धीरे धीरे नदी में मिलता रहता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को नदियों के किनारे लगाने चाहिए। हमें वृक्षों को बचाना होगा, क्योंकि वृक्ष होंगे तो वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी तो नदियों का जल स्रोत भी बढ़ेगा। भारत सरकार के अनुसार गंगा सफाई अभियान कोई छोटी योजना नहीं है, यह विशाल योजना है जिसे करने के कई वर्ष लगेंगे। सरकार के साथ देश के नागरिकों को भी इसमें योगदान देना पड़ेगा, तभी यह अभियान सही मायनों में सफल हो पाएगा। हमें सभी को नदियों को साफ रखने के अभियान में साथ देना होगा। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, नदियों का जल पवित्र हुआ करता था। सभी देशवासियों को जागरूक हो जाना चाहिए और नदियों को स्वच्छ रखने की शपथ ले लेनी चाहिए। नदियां हमारी प्यास बुझाती है, नदियों को हम पूजते हैं, इसलिए नदियों को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हम बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं। हमें प्लास्टिक की थैलियां, बोतल या अन्य सामग्रियां नदियों में या उनके किनारे नहीं फेंकना चाहिए। कचरा उड़कर नदियों में चला जाता है। नदियों में सिर्फ मिट्टी के मूर्ति विसर्जित करनी चाहिए। मूर्ति में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। नदियों का अस्तित्व खतरे में है। नदियां सदा से ही पवित्र और पूजनीय प्राकृतिक जल स्रोत रही है। हमने इनको कचरा पात्र में के रूप में बदल दिया है। यही वजह है कि नदियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। भारत में नदी प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार और अपनी प्रदूषण नियंत्रण नीतियों और योजनाओं का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
1: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दृष्टि से चली गई वार्ता। विषय था नदियों को साफ रखना हमारा कर्तव्य। और आइए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

जी हाँ श्रोताओ, इसी गीत के साथ आज के युवानी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना के प्रमुख मनीष खेत्रपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परियोजना प्रमुख के साथ बिजली, पेयजल, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। इस मौके पर परियोजना प्रमुख ने सांसद को जनहित से जुड़े मामलों में सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल के समीप आज अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर तीन लोगों को घायल कर दिया। तीनों घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है। राजधानी रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में कल रात हुए सड़क हादसे में बुजुर्ग राजकुमार प्रसाद की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में आज स्थानीय लोगों और मृतक के परिजन ने प्रदर्शन किया। बोकारो जिला के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मामर कुदर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग को लेकर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक घर और जेवर दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक ने बताया कि अपराधियों ने घर और दुकान का लॉकर तथा अलमारी खुलवाकर लाखों रुपए नकद और जेवरात लूट लिए। लूटपाट के क्रम में अपराधी दो मोबाइल फोन लेकर भी फरार हो गए। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक गुमटी से चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसडीपीओ सन्नीवर्धन ने बताया कि इस मामले में चोरी का सामान लदा एक वाहन समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के चेरी

0: मनातू परिसर में आयोजित स्टेट लेवल चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। ओपन एज ग्रुप फुटबॉल प्रतियोगिता में सरला बिरला यूनिवर्सिटी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अर्का जैन यूनिवर्सिटी दूसरे और मेजबान सीओजे की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारी रांची केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम किसान वाणी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: वाणी
1: वैज्ञानिक विधि से खेती करो, उत्पादन के बढ़ाओ।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो या सब किसान भाई बहन मन के कृषि जीवन पौराणिक संगे
1: जुगनी बहन दन से
2: जोहार।
1: और ई कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: तो कहो जुगनी बहन, का हाल चाल है?
7: एकदम नगदे नगद है। और बटले कैसन है हाल समाचार? मोर बटले तो खेती बाड़ी भी बढ़िया है और घर दुरा में भी सब बढ़िया है।
6: हमार बटे भी ठीके है और आसरा करी ले कि हमार किसान भाई बहन मन कर भी हाल चाल बढ़िया होगी, काले कि इतना बढ़िया बरखा पानी हो लाई है, इकर में तो खेती बाड़ी बहुत बढ़िया से होत हुई।
7: एकदम बहुत नगद रोरे गोइठ कहली कि खेती बाड़ी तो बढ़िया होत है और धान कर खेती तो एकदम बढ़िया है। और देखो एखन सब्जी फसल का जो खेती है ओकर ले तो बगरा पानी होत है, से कर ले तो निस दिक्कत होत है।
6: हाँ, अत पानी होले भी तो दिक्कत होवेला और नई पानी होले भी दिक्कत होवेला है ना,
7: बेमौसम पानी से जी भी कचकचा जाते।
6: हाँ, सही बात कहली।
7: और देखो भाई जलवायु परिवर्तन कर दौर है के और खेती के पारंपरिक तरीका में भी हमरे के बदलाव लाने के, काले कि जलवायु परिवर्तन हुआ थे तो हमरे के खेती बाड़ी में भी बदलाव करे बहुत जरूरी है।
6: हाँ सही बात है, काले कि तापमान का उतार चढ़ाव, अनियमित बरखा और मौसम बदलाव कर चक्र से फसल के बचाए है और किसान मन कर आय के भी सुरक्षित रखे, और सुरक्षित रखे खातिर कृषि पद्धति के भी सुधराय चाहिए और उके बढ़ावे चाहिए।
7: तो किसान भाई मन के मौसम कर अनुसार फसल चक्र के अपनायक है और फसल के जे किस्म है उकर भी बदलाव करेक है।
6: और जलवायु अनुकूल किस्म कर चुनाव करेक है, कृषि वैज्ञानिक दन से विकसित और उन्नत किस्म कर बीज कर उपयोग करेक है।
7: नगद गोइठ रौरे कहली। और देखो एखन तो आधुनिक के तकनीक कर बेरा है के तो आधुनिक सिंचाई पद्धति के भी हमरे के अपनायक है और इकर से पटवन करके हमरे बढ़िया उत्पादन ले सकेला।
6: हाँ, और जैसन एखन दौर चलत है उकर अनुसार डिजिटल तकनीक से खेती के अपनायक है, मोबाइल ऐप और सरकारी पोर्टल से मौसम कर सटीक जानकारी से अपन खेत में कैसे बुआई करे चाहिए, कैसे उकर सिंचाई करे चाहिए और कटाई कैसे करे चाहिए, सेकर से इस सब तकनीक से हमरे के मदद भेटाई।
7: हमरे के डिजिटल तकनीक के भी अपनाए चाहिए, काले कि हमरे खेती बाड़ी में खाद बीज का छिड़काव जे करीला, लेकिन जे अभी तकनीक है ड्रोन है इकर से कीटनाशी दवाई मन कर छिड़काव और खाद कर छिड़काव भी बढ़िया से हो सकेला और समय कर भी बचत हो सकेला, तो हमरे के नवा तकनीक से भी खेती के भी अपनायक है।
6: हाँ, और नवा तकनीक में देखो मिश्रित खेती करे चाहिए और इकर से फसल चक्र के भी अपनायक है और फसल चक्र से माटी कर स्वास्थ्य बेस रहेला और माटी में लाभकारी सूक्ष्म जीव कर बढ़ोतरी होवेला, जेकर से माटी कर उपजाऊ क्षमता बढ़िया रहेला और उत्पादन भी बढ़िया होवे। धान कर खेती कर बादे तो कुछ करे चाहे किसान भाई बहन मन के?
7: चलो धान कर खेती कर पाछे खेत में कौन सा फसल लगा ताकि किसान भाई मन कर आमदनी बगरा हो सकेला, तो चलो इकरे बारे में हमरे जानकारी करब। और इनकर बारे में जानकारी देवत हैं विशेषज्ञ डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद और इनकर से गोठिया हैं हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
6: किसान साथियों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि किसान केवल धान की खेती पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय के दूसरे रास्ते कैसे बना सकते हैं, और इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद, कनीय वैज्ञानिक एवं सहायक प्राध्यापक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर ताहिरा, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
8: नमस्कार।
6: आप हमारे किसान भाइयों, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि फसल विविधीकरण क्या है?
8: फसल विविधीकरण का सरल अर्थ है एक ही फसल पर निर्भर न रहकर खेत और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलों को खेती प्रणाली में शामिल करना।
6: जी।
8: उदाहरण के लिए खरीफ में धान लेने के बाद रबी में चना, मसूर, मटर, सरसों या सब्जियों की खेती करना फसल विविधीकरण का एक उदाहरण है। इसी तरह खेत के किसी हिस्से में फलदार पौधे लगा देना या फसल के साथ दलहन लेना भी विविधीकरण का एक हिस्सा हो सकता है।
6: जी, तो क्या फसल विविधीकरण से किसान की आय भी बढ़ सकती है?
8: जी हाँ, बिल्कुल। फसल विविधीकरण का उद्देश्य केवल अधिक फसलें लगाना नहीं है, बल्कि उत्पादन और आय के स्रोतों को फैलाना भी है। मान लीजिए किसान केवल धान पर निर्भर है। धान की कटाई के बाद यदि जमीन खाली रहती है तो उस अवधि में खेत में कोई उत्पादन नहीं मिलता है, लेकिन यदि पानी और मिट्टी की स्थिति अनुकूल हो तो धान के बाद दलहन, तिलहन या सब्जी लेने से उसी जमीन से एक अतिरिक्त उत्पादन चक्र प्राप्त किया जा सकता है।
6: जी।
8: हालांकि अतिरिक्त आय निश्चित नहीं होती है, ये टोटली डिपेंड करता है कि मूल्य क्या है, उत्पादन लागत कैसा होगा, मौसम कैसा है, उपज और बिक्री की व्यवस्था कैसी है।
6: जी हाँ, धान की कटाई के बाद झारखंड के किसान खेत में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं?
8: ये खेत की नमी, सिंचाई, मिट्टी और स्थानीय जलवायु पर निर्भर करेगा। जहाँ पर्याप्त नमी या सिंचाई उपलब्ध हो जाए वहाँ किसान चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, सब्जियाँ आदि रबी फसलों पर विचार कर सकते हैं। और जहाँ पानी सीमित है वहाँ कम अवधि और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का चुनाव अधिक उपयुक्त हो सकता है। तो सबसे पहले पूरे खेत में एक साथ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आपको शुरुआत में छोटे क्षेत्र से शुरुआत करनी होगी और इन पांच बातों को ध्यान रखना होगा।
6: जी।
8: पहला कि मिट्टी की अच्छे से जांच करानी है। दूसरा, पानी की उपलब्धता वहां है या नहीं है इसको अच्छे से देखना होगा। तीसरा, अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल और किस्म चुनना होगा। चौथा, उत्पादन लागत और उपलब्ध श्रम यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो वहाँ अवेलेबल लेबर है उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और पांचवा, स्थानीय बाजार और बिक्री की संभावना, मतलब आपको लोकल मार्केट का थोड़ा सा रिसर्च और अंदाजा होना चाहिए। किसान अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या किसी कृषि विभाग या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं। विविधीकरण केवल फसल बदलना नहीं बल्कि पूरी खेती प्रणाली को अधिक विविध बनाना है। झारखंड में किसान अपनी परिस्थिति के अनुसार धान के साथ दलहन, धान के साथ तिलहन, अनाज के साथ सब्जी, फलदार पौधे या अंतर्वती फसल या फसल के साथ पशुपालन जैसी प्रणालियों पर विचार कर सकते हैं। और कुछ क्षेत्रों में तो लाख की खेती, मधुमक्खी पालन

0: बागबानी, सब्जी उत्पादन और पशुपालन को भी खेती के साथ जोड़ा जा सकता है।
1: क्या धान के बाद खेत खाली छोड़ने के बजाय दलहन लेना मिट्टी के लिए भी फायदेमंद है क्या?
0: जी हाँ, ये अलग अलग या बदल बदल कर फसलें उगाना, उनसे मिट्टी को कई महत्वपूर्ण और प्राकृतिक फायदे मिलते हैं, क्योंकि लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं। फसल बदलने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति प्राकृतिक रूप से बनी रहती है और विशेष रूप से दलहनी फसलें खेती प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे चना, मसूर, अरहर, मूंग और उड़द जैसी फसल, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम जीवाणु रहते हैं और वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं उनके रूट के साथ। ये हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे रासायनिक खादों की ज़रूरत कम हो जाती है और अलग अलग तरह की जड़ों से मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, जिससे हवा और पानी का संचार बेहतर होता है।
1: किसी दूसरे राज्य का उदाहरण आप बताइए जहां किसानों ने फसल विविधीकरण से अपनी आय के रास्ते बढ़ाए हैं।
0: जी, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगी। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में किसानों ने पारंपरिक फसल व्यवस्था के साथ फसल और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को अपनाया है। इससे खेती केवल एक मौसमी फसल पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अलग अलग समय पर उत्पादन एवं बिक्री का अवसर मिलता है। इसी तरह महाराष्ट्र में पोमोग्रेनेट बेस्ड फार्मिंग सिस्टम यानी अनार के बेसिस पर उन्होंने कई क्षेत्रों में किसानों ने बागवानी आधारित आय का विकल्प दिया है। हालांकि यह मॉडल हर जगह सीधे लागू नहीं किया जा सकता, तो हम झारखंड के किसान को बोलेंगे कि वो अपने स्थानीय जलवायु, मिट्टी, पानी और बाजार के अनुसार फसल का चुनाव करें।
1: जी, तो अगर किसान धान के साथ अपनी खेती में फलदार बागवानी को भी शामिल करना चाहते हैं, जो बिरसा हरित ग्राम योजना है, इसमें उसकी क्या मदद हो सकती है?
0: जी हाँ, फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब केवल अलग अलग मौसमी फसलों को लेना नहीं है, बल्कि खेती में फलदार बागवानी को भी शामिल करना है। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से हम चयनित ग्रामीण परिवारों को जमीन पर फलदार पौधों का बाग विकसित करने में सहायता देते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर या परती भूमि को उपयोगी बनाना है और फलदार व इमारती लकड़ी यानी कि टिम्बर ट्रीज के पौधों की बागवानी के जरिए ग्रामीणों को स्थायी आजीविका प्रदान करना है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीन कवर को बढ़ाने और किसान की आय में सुधार के लिए शुरू किया गया था। तो इस योजना के जरिए से ग्रामीण परिवारों की जमीन पर फलदार पौधों का बाग विकसित करके रोजगार और भविष्य की आय का स्रोत बनाना है। चयनित लाभुकों को पौधारोपण, गड्ढा तैयार करने, पौधों की देखभाल, सिंचाई या सुरक्षा आदि स्वीकृत कार्यों के लिए मनरेगा के माध्यम से सहायता मिलती है और इस तरह किसान अपनी जमीन के एक हिस्से में फलदार बाग लगाकर धान के साथ एक अतिरिक्त दीर्घकालीन आय का स्रोत विकसित कर सकता है। और एक बात और है कि इस परियोजना के तहत अभी तक जो हमें जानकारी मिली है वो लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च करने के लिए दिया जाता है, लेकिन यह किसान को मिलने वाली सीधी नकद राशि नहीं है, यह बाग विकसित करने की परियोजना लागत है। कुछ कार्यों में लगभग 5 वर्षों तक देखभाल या सहायता का प्रावधान बताया गया है। ये राशि पौधों की संख्या और कुल लागत जिले और स्वीकृत परियोजना के अनुसार बदल सकती है।
1: जी, तो अंत में झारखंड के किसान भाई बहनों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: अंत में मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगी कि खेती को केवल धान तक सीमित ना रखें, अपनी मिट्टी, पानी और स्थानीय बाजार को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण अपनाएं। खेत के उपयुक्त हिस्से में दलहन, तिलहन, सब्जियां या फलदार पौधों को शामिल करें। बिरसा हरित ग्राम योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी लें और अच्छे से लें और उनका लाभ भी अच्छे से उठाएं। याद रखिए, सही फसल का सही जगह और सही तरीके से चयन ही खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: जी, डॉक्टर ताहिरा, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को धान की खेती के बाद

0: फसल विविधीकरण की मदद से अपने आय को कैसे बढ़ाएं इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार। तो एखन हमने जानकारी कर ली धान कर खेती कर पाछे फसल विविधीकरण के मदद से किसान भाई मन आय कर नया रास्ता कातर अपनाए सके ना इकर बारे में बड़ा नगद जानकारी भेटालक। और इनकर बारे में जानकारी देला डॉक्टर ताहिरा अर्जुनमंद और इनकर से बातचीत कर लें हमरे के संगी कृष्ण जीवन पौराणिक। तो भाई जानकारी कर संगे संगे हमरे के रिज भी करे के है।
0: सही बात के कह ली। तो आओ एगो गीत सुना थी हमरे पंच परगनिया में सुभाष कोइरी और संगी मनकर गावल।
1: चलू तब सुनब।

0: गीत तो बड़ा नगद सुनाए दिली, मन तो कह रहा थे कि गीत के सुनते रहब, लेकिन आगे हमरे किसान से करल गोइठ के सुनब। और किसान जे कि सब्जी उत्पादक किसान है राजी उरा, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: किसान भाई बहन मने, आज हमार संगे एगो किसान है राजी उराव, ये ग्राम चितरकोटा पोस्ट पाली रातू रांची कर हकें। तो ये खेती बाड़ी करें ना, तो आओ हमरे जानकारी करी ले कि अपन खेती बाड़ी कैसे कैसे करें से करवा रहे भाई रावर के जोहार कर थे।
2: जोहार
1: राजीव जी, एखन रावठना कतना जमीन है?
2: मोर जगह है एखन 7-8 एकड़।
1: 7-8 एकड़ जमीन है, तो 7-8 एकड़ जमीन में रावरे कतना जगह में खेती करी ले?
2: हम तो 3-4 एकड़ में खेती की सब्जी खेती करी ले, और बाकी बात 3 एकड़ में धान खेती लगाई ले।
1: तो एखन तो धान लागल होगी?
2: हाँ धान लागल है।
1: एखन जैसे धान लगाए दे ही, और आवे वाला समय में खन का चीज के लगाव रहो रही?
2: आवे वाला समय में लगाव हम इन फरस बीन के लगाव, मटर लगाव और आलू।
1: फरस बीन, आलू और मटर, सबसे पहले और कौन चीज कर खेती करो?
2: सबसे पहले तो आलू का खेती करो।
1: आलू
2: का लगाव?
1: तो आलू और कैसे कैसे लगाव से हमार किसान भाई बहन उनके बता दो।
2: देखा हमार किसान भाई मन अगर जे आलू खेती करा ला, तो उमन के हमार भर से बता चाहब कि उमने आलू रोपे ले खेत के पहले खेत के जोत के सुखावा, उकर बाद सुखाल पाछे उके बेस से मतलब जोत कोड़ के रेडी करे खवेला। और कर में जैसे अगर ज़्यादा बड़ा जगह है 2-3 एकड़ है, तो कर में तो के 4-6 गाड़ी गोबर खाद का जरूरत पड़े ला। और गोबर खाद के अगर तो चाहवा तो गोटे खेत में छीट भी सकाला, छीट के उके रोटावेटर से जुतवा के पूरा सम करके लेबल कर सकाला। और नहीं तो वैसा नहीं पा रहा तो फिर उके जैसे कि हम इन कही देहाती भाषा में हर गढ़ा करी ला, उकर में गढ़ो गढ़ा में दे के आलू के रोप के गढ़ा गढ़ा में दे के उकर बाद फिर जैसे हम इन कर आलू लगा के अथी लेबर लगा के कुड़ी से भाठिए ला से टाइप से दार बनाए के चढ़ाए खवे ला।
1: आलू कर कौन किस्म के रौरे लगा एखन?
2: एखन आलू हम इन लगाव तो सफ़ेद आलू में लगाव तो 34, और लाल आलू आवेला इंटीमिटम सिवान आवेला।
1: तो वो आलू कर बीज कर व्यवस्था कहाँ से हो जाएगा?
2: आलू कर बीज कर व्यवस्था हमें नहीं, आप 15 बाजार से कीन के लेके जाइले।
1: और जोताई कर का साधन है?
2: जोताई का साधन हम तो खुद अपने ड्राइवर ही से ले गाड़ी चलाई ला, तो वह गाड़ी से अपन भी काम करी ला, और अगला जो मालिक है उकरो काम कर देवी ला वह गाड़ी से।
1: अच्छा, रोरे ट्रैक्टर चलाई ला?
2: हाँ।
1: और ट्रैक्टर से मालिक कर भी काम करी ला, अपनो खेत कर कर
2: अपनो खेत कर काम कर।
1: चलो बहुत बढ़िया है। एखन कौन कौन चीज लागल है रोर खेत में?
2: खान हमार खेत में लागल है बैगन लागल है। बैगन लगाए ही और तीता मिर्चा लगा ही।
1: अच्छा, हरा मिर्च?
2: हरा मिर्चा। हाँ,
1: तो ये सब के खन तोड़ा थी?
2: हाँ, ये सब के खन तो तोड़ा थी और तोड़ के बेची लगा ली।
1: और बैगन लगाए और हरा मिर्चा जैसे लगाए हमारे किसान भाई बहन मैंने जे भी लगाए हैं, तीकर में तो खन रोग उग भी हुआ था?
2: हाँ, बैगन में तो खास करके अधिक ज्यादा रोग आवे ला, कहे कि पानी जैसे अगर जल्दी लगावे तो बैगन में बहुत सा तना छिदक और फल छिदक, इकर सबसे ज्यादा रोग आवेला। जैसे कि मतलब अति फल के कीड़ा खाएला, और उकर पौधा जो होवेला सके डाइट के उके खाए के अथी कर देवेला, और झुलस जाएला, मुरझाए के झुलस जाएला, और उकर बीमारी तो सबसे ज्यादा है। तो उकर ले हम इनके बहुत सा चीज के ध्यान देवे खवेला। उकर बैगन में सबसे ज्यादा दवाई देवे पड़ेला।
1: कौन कौन सा दवाई रहो रे देवीला
2: बैगन में? तो एखन सबसे ज्यादा देवीला सेमिडिस के, और एक ठो आवेला काला घोड़ा करके, रेडमिल गोल्ड हो गेलो छोटका पौधा हो तो, और पौधा बढ़ गेलो तो उकर में तो के सेमोडिस चलाक हो तो। और बैगन में हमेशा दवाई के मतलब चेंज करके चलाक हो गेलो, जैसे एखन सेमोडिस देली तो अगले बार काला घोड़ा कर हम देहाती भाषा में तो उके देवी ला, मतलब एक बार इके तो एक बार उके मतलब हिने हुने करके, और एक ठो दवा चलावे तो जे कीड़ा लगल हो से मतलब नहीं हटौला, और दवा के चेंज करबे तो वो अल्टी पल्टी हो के मतलब।
1: तो बैगन कर कौन किस्म के रौरे लगावी ले?
2: बैगन कर हमें लगा है VNR।
1: आज जैसे खन रोग कर बात कर ली, तो कैसे पता चल?

0: गेलक हमारी बैगन कर जैसे पौधा में रोग लग गेलक से।
1: बैगन में रोग तो जैसे मौसम गर्मी अगर धूप मारेला तो जब पता में कीड़ा लाग है नहीं से झुलस जाएला तो पता चल जाए कि हम इनकी कर में कीड़ा लगल है। तो ओकर से हमीन देख के जान जाएला कि ये वाला कीड़ा लगल है उसके तोड़ के हम हटा देवी ला।
0: अच्छा।
1: और तोड़ी ला तो तोड़ल पाछे उके फिर हम इनके मतलब दवा का स्प्रे करे पड़ेला ताकि ओकर में दवा जाए स्प्रे करब तो कीड़ा हुआ कर मर जाए।
0: तो कितना जगह में खन रहे बैगन कर खेती कर रही?
1: बैगन की खेती हम एक एकड़ में करी खन।
0: एक एकड़? तो एक एकड़ करे में और की पूंजी कितना लग लग?
1: एक एकड़ में हमके तो लाई गए खन बैगन में 1.5 लाख रुपए पूंजी लाई गई।
0: अब फायदा कितना हो जी?
1: फायदा तो मार्केट के हिसाब से पता चली कैसन रेट मिली होले फायदा होगी और कैसन हुई होले किसान के कभी घाटा भी होवेला। अगर रेट मिलक तो फायदा होवेला रेट नहीं मिलक तो घाटा भी होवेला कभी कभी मतलब पूंजी खाली घूरेला।
0: तो बैगन कर और जो पौधा है अपने तैयार करी ले कि खरीद के लानी ले?
1: नहीं बैगन कर तो हम खरीद के लानी ले कर ग्राफ्टिंग वाला मंगाई ले बाहर से।
0: बाहर से। और जो खेती बाड़ी हो जाएला तो इकर खपत कैसे करी ले?
1: इकर खपत हम बाजार में करी ले। तो बाजार यहाँ हम जगह लगे ला तामे 4-5 दिन तो वही बाजार में लगा के खपाई ले।
0: तो आखिरी में हमारे किसान भाई बहन मन के खेती बाड़ी कर बारे में का कहे चाहब अपन दन से?
1: हमारे किसान भाई बहन मन के कहे चाहब कि जितने भी है किसान भाई मैंने से मैंने एखन तो आधुनिक समय है तो बड़ी ऐसे हम कहब कि ड्रिप से खेती करा। ड्रिप में लगावे तो कोई भी चीज लंबा समय तक निकलेला। अगर लंबा समय तक निकली तो कभी न कभी उकर रेट तो के मिल जाएला। उकर में तो जे रेट मिल जाएला तो कभी सस्ता में कम में बेचवे तो जब रेट मिली तो उकर में मेकअप हो जाएला। सुकर से हम इनके घाटा नहीं होवेला।
0: तो चलो रे बहुत बढ़िया अपन अनुभव के साझा कर लिया हमारे किसान भाई बहन मन के रे बहुत बहुत जोहार है।
1: जोहार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिर अलग।
4: ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: और प्रस्तुति रहे प्रभु शरण जी कर। तो सुनोया भाई बहन मने अवरणन कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
4: जुगनी बहन के देव विदा
3: जोहार।

0: पढ़ो लिखो आगे बढ़ो।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: जुगनी बहन बटले
1: जोहार। और कहो हाल चाल मने?
0: एकदम बढ़िया है। रौर बटले कैसन है?
1: बहुत बढ़िया है। और आशरा करी लगी सुनोया भाई बहन मन कर भी हाल चाल बढ़िया हुई। और मौसम देखो कितना सुहावना कर दिलक है, जेके कहे ने झेर बदरी वह लगा दे है झेर।
0: एकदम नगद गोठरो रे कहली देखो झेर जे करलक नहीं से करम कर झेर कर।
1: हाँ करम कर झेर। हाँ
0: अब देखो यह झेर करते करते जीतिया पहुंचाई। पर्व भी लगले लागल है तो जीतिया कर झेर करी तले वह झेर करत करत दुर्गा पूजा भी पहुंचा देवी। अब परब परब में पानी आवी
1: तो झेर कर बात कह ली तो सही में याद होल के पहले के जमाना में जो झेर होत रहे निशन झेर तो ढेकी कर गढ़ा मन में भी पाजरा फूट जात रहे। हमरे कर तो कोठा में भी पाजरा फूट जात रहे और बाल्टी से उबज उबज के रात भर फेंकत रहत रही।
0: और देखो धान मने बिहाने अंधरे उठ के कूटे रहत रहे और ढेकी से हल गढ़ा ने पानी भर जात रहे तो उके भी तो नहीं साफा करे पड़त रहे है कि नहीं।
1: हाँ हाँ।
0: और देखो पहले का बेरा ही ऐसा रहे कि बिहाने अंधरे उठले मुर्गा चिलाना उठली तले ढेकी अपन सबकर घरे ढचंग ढचंग सुना थे।
1: और देखो ढेकी जाता जे चलात रहे नहीं पहले तो सेहत भी बहुत बढ़िया रहत रहे। पहले कहाँ उतना बीमार पड़त रहे जैसे अखन देखो कि बीमारी बढ़ते जाते नवा नवा बीमारी के सुनत थी अखन सब बीमारी कहाँ रहे जे
0: एकदम। और देखो बीमारी कर और बात कर थी तो पहले कर आदमी कर खान पान जे रहे बड़ा बेस रहे जैविक खाद से जे उपजल रहत रहे सिक्के खात रहे। और अखन कर खान पान है जे कि हमरे खाइला रासायनिक खाद से। और देखो रासायनिक खाद कर चल तो हमरे खाबे करेला और तनी मनी कम रहेला तो उके बेस से और बढ़िया दिखी बोल के कोनो कोनो नवा रासायनिक चीज मन के डाल के चमका देवन जे कि एखन चोर मन को देखो बाजार कर तो एकदम लौकेला
1: पॉलिश मन लगाल रहेला तो वह से जो इतना बगरा जैसे बीमारी बढ़ा थे। और देखो एखन जे कचिया देके आजकल कर छुआ मने जिम जाए ना है नहीं और वो जिम वो बेरा हमरे कर घरे में रहे ढेकी जाता सूप और हर जोते कोड़ी पारे की सब का रहे व्यायाम रहे घरे में जिम रहे
0: गिली डंटा खेलत रहे। हाँ। नहीं छूरमन खेलत रहे तो सेकर से शरीर स्वस्थ रहत रहे तो छुआ मन कर भी स्वास्थ्य बढ़िया रहत रहे। तो एखन आधुनिक कर बेरा है के एखन कर छुआ मन तो मोबाइल में लागल रहे ना है कि नहीं
1: देखो कुरे से दिमागी कमजोरी भी बढ़त है।
0: हमरे के मोबाइल कर जरूरत से ज्यादा उपयोग नखे करे
1: देखो बहुत सारा जानकारी जैसे मोबाइल से तो भेटायल अगर उसके सही उपयोग करब तो मोबाइल से बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी भेटायल। और देखो एखन बहुत जरूरी जरूरी जानकारी है जैसे मान लो कि कहूँ जात ही और गुंडा बदमाश मन घेर लेने उके कैसे करब हाथ में मोबाइल है तो जानकारी कैसे दे।
0: जानकारी देवे खातिर हमरे हेल्पलाइन नंबर मन कर सहायता ले सकीला और 100 नंबर में डायल करके या तो 112 नंबर में डायल करके हम पुलिस के जानकारी दे सकीला और इकर से मदद ले सकीला है।
1: सही बात है।
0: और अगर कोनो ठाव ठीन आग मन लाग गेलक है गैस मन का रिश्ता हुआ थे आपातकालीन स्थिति है तो ऐसा बेरा में 101 के हेल्पलाइन नंबर से हमरे सहायता ले सकीला उकर में कॉल करके उकर से सेवा ले सकीला।
1: और जैसे कोनो बेरा सड़क दुर्घटना हो गेलक तो ऊ बेरा भी हेल्पलाइन नंबर है 108 और इके डायल करके रावरन एम्बुलेंस बुलाए के और इमरजेंसी हालत में रोगी के अस्पताल पहुंचा सकीला।
0: बड़ा नगद गोइठ रोरे कहले। और देखो 104 नंबर में भी डायल करके हमरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निशुल्क सेवा ले सकीला और ई नंबर में डायल करके हमरे घर बैठे स्वास्थ्य चिकित्सा मन कर सलाह ले सकीला और उकर जानकारी भी ले सकीला।
1: हाँ तो भाई अब उतरे गोठी आयल जानकारी मन कर तो बात बता दिली और सुनवैया भाई बहन मने हमरे कर बात के सुन के आसरा करिल के लाभ उठावे अब कार्यक्रम के आगे भी बढ़ाए चाहिए तो आओ कार्यक्रम के आगे बढ़ाती एगो गीत से नागपुरी लोकगीत से जेके गावत हैं बशीर अंसारी और संगी मने ये बहुत बढ़िया हमरे कर छोटा नागपुर धरती कर वर्णन है गीत में।
0: चलो तभी गीत के हमरे सुना

0: बड़ा नगद गीत रौरे सुनाली। गीत तो बहुत बढ़िया रहे, मन के बड़ा रिझा देलक। मन तो करत है कि गीत के सुनते रह, लेकिन आगे भी हमरे के जानकारी कुछ करे।
1: हाँ,
0: है
1: जानकारी बादे हमरे फिर गीत के सुना।
0: और आज हमरे कुरमाली में जानकारी करब, शिक्षा कर अधिकार विकास केर आधार है।

0: रहे और इकरे बारे हमरे के जानकारी करवावे डॉक्टर अशोक कुमार महतो।
1: आज कर समय महान विश्व जितना तेजी ले प्रगति कर लागल है उठाए शिक्षा कर सबले बड़ो जाएगा आहे। 18वीं-19वीं सदी महान यूरोपे छुआ के पढ़ाई पूरा अधिकार माया बाप कर उपरे रहे। फ्रांस कर क्रांति और अमेरिकी क्रांति कर बादे लोगे इटा बुझला कि शिक्षा एक सार्वजनिक अहमियत रखे। 19वीं सदी कर आखिर महान शिक्षा अधिकार के मानवाधिकार महान जायगा देवल गेले और एक और बादे शिक्षा के चर्च कर अधीन ले हटाई के सरकारी काम काजे राखल गेले। एक और बादे बाल श्रम कानून सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील एमान बेजान निया सरकारी योजना शुरू करल गेले। सोच है कि छुआ के शुरू ले पढ़ल जाओ आरोप करते हैं मुक्त शिक्षा कर व्यवस्था करल गेले। शिक्षा का अधिकार ऐसा अधिकार है के जे समाज को शेष आखिरी लोग तक के अधिकार देवे कि ओय फ्री और अनिवार्य शिक्षा पाता जहाँ छुआ छूत ऊंच नीच भेदभाव सभी सिरा जाए। शिक्षा मानवता को आधार है के विकास को आधार है के बिना शिक्षा कर कोनो मानुष अन्य जीव जंतु निया रहता। कोनो देश समुदाय या प्रदेश कर प्रगति ये बातें निर्भर करे कि हुआ शिक्षित कर किना अनुपात आहे। शिक्षा प्रगति विकास कर पर्याय कहल जाए तो कोनो अतिशक्ति नहीं हेते। शिक्षाएं न आपका अर्थव्यवस्था कर विकास के बढ़ावा देवे बल्कि सामाजिक सोच के बढ़ावे। नेल्सन मंडेला जैसन विद्वानों कहले हाथ कि शिक्षा वो अधिकार है के जटाले पूरा संसार के बदले पारी हो। सभे माया बाप एक सपना रहेगा कि ओए अपन छुआ के एक सुरक्षित शिक्षित और सुंदर भविष्य दें और इस सपना की शुरुआत छुआ जन्म ले शुरू हो जाए। सभे माया बाप छुआ के बेस ले बेस शिक्षा देवे चाहत। भारत आज विश्व को एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बनी गया है। चीन कोर बादे सबले तेज आर्थिक विकास दर हमर है के हमर तहा दुनिया को दूसरा नंबर को सबले बड़े आर गतिशील मजबूत और भुक्ता बाजार है। मंतुक इस अवेक हेत को और शिक्षा हमर एक बड़े भयानक सच्चाई बनी के ठाड़ा है। इटाक अंदाज इस बात ताले करे पारी हो कि जखन भारत आजाद हेल रहे तखन देश को बेजान लोग और शिक्षित रहत। मंतुक आज भारत आजाद हेल कर बादो और शिक्षित कर संख्या 1947 कर जमा जनसंख्या

0: गीत सुन के एकदम बड़ा रिझत रही है ने।
1: हाँ, राउत के बेस लगला।
0: लेकिन अब रिझक बेरा खत्म हुआ थे है ने। तो देखो यह गीत कर संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरालक
1: और कार्यक्रम का प्रस्तुति रहे प्रभु शरण के।
0: तो सुनुया भाई बहन मने अबरावरण कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: जुगनी बहन के देव विदा
0: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण दुनिया पर आधारित कार्यक्रम हमारी दुनिया। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यानी 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
2: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, 4 जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
1: जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान।
3: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
4: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
7: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
6: पिछले हफ्ते ही तो तुमने NSB कराई है।
7: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 का काम। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
8: NSB कराने।
7: पुरुष नसबंदी यानी NSB की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम MMDR अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देशभर में समान व्यवस्था कायम होगी और पारदर्शिता आएगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड को छोड़ सभी राज्यों ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खान और खनिजों की नीलामी में कोई रुचि नहीं दिखा रही है।
1: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा हो।
2: बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस MMDR एक्ट संशोधन बिल का विरोध कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि सरकार के खजाने में पैसा न आए, सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त न हो, सरकारी संस्थाएं मजबूत न हो, अवैध तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है।
0: प्रदेश कांग्रेस ने MMDR अधिनियम पर भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर MMDR को लेकर भ्रम फैलाने और झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड से निकलने वाले खनिजों पर पहला वैधानिक अधिकार राज्य का है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने गढ़वा जिले के टंडवा में आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि इस केंद्र के खुलने से आधार से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसद ने केंद्र से जुड़े कर्मियों से प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा आदित्यपुर में आज वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने सरकार और मीडिया के बीच सतत एवं सकारात्मक संवाद पर जोर दिया। इस दौरान पद्मश्री छुटनी महतो ने डायन कुप्रथा के प्रति जागरूकता पर बल दिया। राज्य में SIR के तहत फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित है। इच्छुक लोगों के पास मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को निपटाने के लिए अब मात्र 3 दिन शेष हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक फॉर्म 6 के माध्यम से 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि SIR के तहत 19 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आइए सुनते हैं इस योजना पर देश के प्रधानमंत्री का क्या विजन है।
3: देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है।
0: स्वच्छ भारत मिशन पर

0: प्रधानमंत्री के इस विजन का असर धनबाद जिले में साफ दिख रहा है।
1: जाते थे उसमें बहुत सारे समस्या आती थी, आज जब शौचालय घर में हो गया तो सबको समझ में भी आने लगा, उसमें जागरूकता भी हुआ कि नहीं घर में साफ सुथरा रखना, शौचालय रखना बहुत ही अच्छा मैसेज रहा।
2: सर 5 साल पहले बना था शौचालय प्रधानमंत्री वाला, जिसके कारण अभी हम लोग बाहर में जाना पड़ता, घर के महिलाओं को भी बाहर में जाना पड़ता है, अभी हम घर से ही शौचालय जाते हैं और गंदगी उनकी पहले हुआ करता वो भी नहीं होता।
0: डालसा के तत्वाधान में रांची के महुआजारी पंचायत भवन और कानीजाड़ी गांव में नालसा द्वारा संचालित मानसिक बीमारी और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा योजना पर 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को जानकारी दी गई। पीएलवी तालिब अंसारी और कालिंदर गोप ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य हर बच्चे को सुरक्षित, संवेदनशील और मुफ्त न्याय सुनिश्चित करना है तथा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बच्ची की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। गुमला सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अनुपम किशोर ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी
3: और गार्जियन से बात करने में पता चला कि मामला कुछ सामूहिक दुष्कर्म जैसा, तो हमने अपने स्तर से गुमला थाना को सूचना दिया, उस पुलिस की टीम आई थी, उन्होंने परिजनों से पूछताछ किया और बच्चे से पूछताछ नहीं हो सकी क्योंकि स्थिति गंभीर थी, बोलने की स्थिति भी नहीं, तो गंभीर स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उसे रांची रेफर कर दिया।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में निम्न दबाव के प्रभाव के असर से पिछले 4 दिनों के दौरान रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। नदियों और जलप्रपातों में पानी का बहाव बढ़ गया है। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वे लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तलब किया गया है। श्री अंसारी ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है।
4: बैठक किया था और सभी डीसी को हमने निर्देश दिया है कि आप लोग नजर बनाकर कि कितनी बारिश है, कितनी आंधी है, कहाँ पर ठंड का गिर रहा है, इसका आकलन कीजिए आप लोग और मुझे भेजिए। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम हर तरह का मदद हम लोग करेंगे। लोगों से यही अपील करेंगे कि थोड़ा सा बारिश हो रहा है, घर में रहें, कहीं बाहर ना जाएं।
0: जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों के कबड्डी में आज भारत के लिए स्वर्णिम दिन रहा। महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम एशियन गेम्स में देश को 4था स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले महिला क्रिकेट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने MMDR अधिनियम का किया स्वागत। राज्य सरकार पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप। कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। SIR के तहत विभिन्न फॉर्म जमा करने और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए अब 3 दिन शेष। मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को। आपदा प्रबंधन मंत्री ने नदियों और जलप्रपातों में बढ़ते जलस्तर पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उपायुक्तों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट किया तलब। और एशियाई खेलों के कबड्डी में आज भारत के लिए स्वर्णिम दिन। महिलाओं के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

0: उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
1: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
2: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
1: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
2: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
1: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी।

0: की उम्र भी कच्ची है।
1: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
2: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
1: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
2: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
1: और लड़के की 21 वर्ष है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले में आज तक आजकल

0: अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: मंगलवार को खूंटी जिले के सभी गांव और विभिन्न पंचायतों में करम पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ विधि विधान से पूजा पाठ और पारंपरिक सामूहिक नाच गान के साथ मनाया गया। स्थानीय करम उत्सव में सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक रामसूर्य मुंडा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई अतिथि शामिल हुए। इस हफ्ते कांग्रेस ने सांसद के आवासीय कार्यालय में केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा,
2: झारखंड को केंद्रित करके काला कानून लाया गया, जिस कानून से झारखंड को राजस्व जो शेष मिलता था उस शेष पर सीधे प्रतिबंध लगाने का काम भारत सरकार ने करने का काम किया है।
1: खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झामुमो ने भी इस हफ्ते विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खूंटी विधायक रामसूर्य मुंडा और महिला मोर्चा की स्नेहलता कंडुलना ने कहा,
3: केंद्र सरकार ने हमारे राज्य सरकार के साथ हमेशा सम्मेलन करते आ रहे हैं, कभी हमारे 1,30,000 करोड़ राशि को जो किया और यहाँ का जो भी खरीद पड़ा है अपने नाम आकर कर रहे हैं, ऐसे में हमारे सरकार अपने राज्य को कैसे चला पाएंगे। हमारे बेटी बहन जो प्रत्येक महीना 2,500 के हिसाब से देती है, ये 2,500 रुपया हम लोग कहाँ से देंगे।
4: खान एवं खनिज जो विधेयक लाई है 2026 झारखंड को बहुत ज्यादा हानि है, तो ये जब तक वापस नहीं लेगी हम सड़क से सदन तक जाएंगे, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
1: जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य में विभिन्न पंचायत और क्लस्टरों में संशोधन और नए मतदाता संलग्न करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी ने बताया,
5: जिनके नाम में कोई त्रुटि है, उनका गलत मैपिंग कर दी गई है या फिर उनके एज में या किसी भी चीज में अगर कोई भी त्रुटि है भूलवश या किसी भी कारण से, उसको सही करने का मौका लोगों को दिया जा रहा है, मतदाताओं का। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनका की किसी भी 2003 के वोटर के साथ मैपिंग नहीं की गई है, उनकी भी सुनवाई अभी नोटिस के माध्यम से की जा रही है। हर बूथ पर प्रतिदिन लगभग 2 से 3 बूथ पर सुनवाई होती है, जहां पर हम लोगों की टीम जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे भले ही वो प्रवासी मजदूर हों या फिर यहाँ के अस्थाई निवासी हों, उन सब का नाम हमें लिस्ट में जोड़ना है, वोटर लिस्ट में जोड़ना है।
1: फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइक बेचने वाले गिरोह का खूंटी पुलिस ने भंडाफोड़ कर 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने कहा,
6: पूर्व में काफी सारी बाइक्स की चोरी की है और इस तरीके से करते करते इन लोगों के पास से हम लोगों को 19 2-व्हीलर्स मिले और इनके द्वारा एक 4-व्हीलर भी इस तरह से चुराया गया था जो कि ओडिशा का एक नंबर है, उसपे गिरोह का हम लोगों ने एक तरह से पर्दाफाश किया है। इसमें 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है।
1: खूंटी पुलिस ने मानवीय संवेदना और तत्परता दिखाते हुए लगभग 2 वर्षों से लापता व्यक्ति को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया। दूसरी तरफ मिशन मुस्कान के तहत गुम और चोरी हुए 28 मोबाइल फोन बरामद कर असली धारकों को खूंटी पुलिस ने मोबाइल सुपुर्द किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीत। लोकगीत हो भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। कलाकार हैं कृष्णा हेमराम और साथी।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं गीत गजल का कार्यक्रम स्वरांजलि। स्वरांजलि में आज हम पेश कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में गजल।

अभी आप सुन रहे थे गीत गजल का कार्यक्रम स्वरांजलि। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं विज्ञान जगत कार्यक्रम। आज का शीर्षक है भारत का अंतरिक्ष और उसका अवलोकन। संकलन और वाचन मीनाक्षी कर्ण का है।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विज्ञान जगत में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई बातें, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नवीन शोध चल रहे हैं या क्या उपलब्धियां रही हैं, भारत विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहा है और पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उससे हमारी मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ने वाला है, इन सब के विषय में हम अपने इस अंक में आप

वर्षों में अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंचाया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करना था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशेषता राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दृष्टि है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित संसाधन सर्वेक्षण प्रबंधन, उपग्रह नेविगेशन, उपग्रह मौसम विज्ञान, अनुप्रयोगों और अन्य उभरते क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भर तरीके से परिचालन, अंतरिक्ष सेवाएं स्थापित करना और इन क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान और विकास करना है। अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। अंतरिक्ष विभाग यानी कि DOS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के साथ साथ अनुसंधान और विकास के लिए भी जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग DOS के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सक्षम बनाना है और यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेदार है। और अंतरिक्ष सुधारों के बाद इसकी भूमिका और इसके दायरे को बढ़ाया गया है, जिसमें पृथ्वी अवलोकन और संचार के लिए उपग्रहों का स्वामित्व और उपग्रह सेवाएं प्रदान करना, उपग्रह और प्रक्षेपण वाहन बनाना, प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना शामिल है। भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र देश में निजी संस्थाओं की गतिविधियों की अनुमति देने और उनकी देखरेख करने के लिए DOS के तहत स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। श्रोताओं, इसरो के परिचालन प्रक्षेपण यान PSLV, GSLV और GSLV-M के 3 पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए अंतरिक्ष तक सुनिश्चित पहुंच प्रदान करते हैं। छोटे उपग्रहों की ओर वैश्विक बदलाव को पूरा करने के लिए समर्पित एक छोटा लॉन्चर SMLV विकासाधीन है। चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के 2 लॉन्च पैड देश को अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता भी प्रदान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम अपने भविष्य के अंतरिक्ष विज्ञान मिशन के विकास में लगा हुआ है, जैसे कि चंद्रमा के लिए मिशन चंद्रयान 3, सौर अन्वेषण मिशन आदित्य L, अंतरिक्ष वेधशाला एक्सपोसैट, ये सब वर्तमान में प्रचालनरत मिशन एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित खगोलीय वेधशाला और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। गगनयान का कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ऑर्बिटल मॉड्यूल और भारतीय मानव रेटेड लॉन्च वाहन का उपयोग करके मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाने के लिए एक मिशन शुरू करके मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को पूरा करना है।
मानव युक्त उड़ान से पहले

दो मानव रहित उड़ानों की योजना भी बनाई गई है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकें जैसे क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम और पर्यावरण नियंत्रण जीवन समर्थन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और जिसमें कई व्यवसायों के निवेश के लिए अवसर हैं। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दृष्टि से भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सामूहिक रूप से घरेलू निजी कंपनियों ने वित्त पोषण जुटाया है। इसरो ने संयुक्त मिशन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मंगलयान मिशन के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश था और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मिशन है और इसरो प्रक्षेपण यान और इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर जैसी नई तकनीकों के विकास पर भी काम कर रहा है। इसरो रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन और उपग्रह आधारित मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करता है और भविष्य में इन सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसरो ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई छात्रों, स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों को भी बिना किसी न्यूनतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह से उत्पन्न डेटा को उधार देने का भी फैसला किया है। यानी कुल मिलाकर भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आने वाले वर्षों में लागत प्रभावशीलता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के लिए तैयार है। स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अभिनव समाधान प्रदान करके अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। वे नए विचार और तकनीकें ला रहे हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति देने में मदद कर रहे हैं। इसरो के साथ ये काम कर रहे हैं जिससे उन्हें नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी और उद्यमशीलता की विशेषज्ञता मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य आशाजनक है जिसमें कई प्रमुख पहल और परियोजनाएं चल रही हैं। सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से निरंतर समर्थन के साथ भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने के लिए भारत तैयार है। तो श्रोताओं, आज हमने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में इस कार्यक्रम विज्ञान जगत में चर्चा की और अब आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। विज्ञान जगत से नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक शी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर

0: पूरे कर रहे हैं। ये जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
1: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
2: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
3: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहाँ से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
1: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

0: आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
1: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल अफीसर

0: एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में एनसीसीएफ की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मंशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे और एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और मर्दों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने मर्दों की शॉटपुट में चांदी का तमगा जीता। तमगों की फहरिस्त में भारत सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों तक पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बूथ लेवल अफीसर बीएलओस इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी की मुहिम एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। इसके बाद बीएलओस उन दस्तावेजात को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन की मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। कमीशन ने वजाहत की कि इस तरह के अफराद को इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानिब से समात के लिए तलब नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि समात सिर्फ गैर मामूली हालात की सूरत में ही की जाएगी और वो भी तरजीहन ऑनलाइन होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एसआईआर का हुक्म उसकी इतफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार और मगरबी बंगाल समेत 20 रियासतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नज़रसानी का काम मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि एसआईआर के दौरान अगर किसी का नाम शामिल नहीं हो पाता और वो अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो मुतालिका इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर को दरख्वास्त दे सकता है। चीफ इंतखाबी अफसर, ज़िला इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर इन वोटरों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ करेंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर की दरख्वास्त के पेश नज़र दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिसों, दावों और एतराज़ात को निपटाने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
0: नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल बराए मीडिया आशीष गोयल ने कहा कि आज कमीशन की एक मीटिंग हुई जिसमें आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 24 जून को तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए जारी किया गया एसआईआर का हुक्म कमीशन की इतफाक राय पर मबनी मंजूरी के साथ जारी किया गया था जिसका आगाज बिहार से हुआ। कमीशन ने यह वजाहत भी की कि काबीना सेक्रेटरी को भेजा गया खत इंतखाबी कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर या उसके आईटी डिवीजन से मुतालिक नहीं था बल्कि यह खत इंतखाबी कमीशन में डिपुटेशन पर आए एक ऑफिसर के कामकाज से मुतालिक था। बीजेपी ने अपोजिशन पार्टियों बिलखसूस कांग्रेस की जानिब से एसआईआर के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन पर आयद किए गए इल्जामात की मजम्मत की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंतखाबी कमीशन प्रेस के लिए एक नोटिस जारी कर चुका है जिसमें उसने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी एसआईआर से मुतालिक फैसले आला इंतखाबी कमिश्नर और दोनों इंतखाबी कमिश्नरों की रजामंदी से किए गए हैं। जनाब प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने एतराफ किया है कि उसकी जीत की एक वजह एसआईआर था क्योंकि इस अमल के सबब उन जाली वोटरों को हटा दिया गया जो गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थे।
2: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है क्योंकि वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले फेक वोटर्स और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलाआत और नशरियात की वजारत की यूट्यूब चैनलों पर

0: कार्रवाई को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
1: सालाना बातचीत का एक प्रोग्राम है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी इम्तिहानात के दबाव से निमटने और खुशी के साथ सीखने के अमल के बारे में तलबा, असातजा और वालदेन से बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स तहरीक के तहत 2018 में इस मुल्कगीर मुहिम पहल का आगाज हुआ, जिसने नौजवानों को इम्तिहानात बगैर दबाव के साथ एतमाद से देने में मदद की। इस पहल ने इम्तिहानात को बोझ की बजाय मौके के तौर पर पेश किया। परीक्षा पे चर्चा पहल के तहत मुनक्कद एक प्रोग्राम में तलबा से बातचीत में वजीर आजम ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो किसी भी तरह के दबाव से निमटने की खातिर खुद को मजबूत और बासलाहियत बनाएं।
2: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होगा।
1: इस प्रोग्राम ने करोड़ों भारतीय नौजवानों की सिर्फ कारकर्दगी से तवज्जो मजमूई तरक्की की जारी मुंतकिल की, जिससे इम्तिहान का दबाव कम हुआ और उनकी जहनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दी गई। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक सारिफिन की सहूलत के लिए कल इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि यह कदम इस माह की 28 तारीख से 30 तारीख तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों की जानिब से 3 रोजा मुजवजा मुल्कगीर बैंक हड़ताल के तनाजुर में उठाया गया है। इस हड़ताल से कबल 26 और 27 सितंबर को हफ्तावार छुट्टियां थी। उधर सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोजा बैंक हड़ताल के दौरान एटीएम से किए जाने वाले लेन देन पर माहाना मुफ्त हद के बाद आयद होने वाले चार्जेस को खत्म करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कल उत्तराखंड में कुछ मकामात पर तेज से बहुत तेज बारिश और दूर दराज के मकामात पर इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के मकामात पर तेज से बहुत ज्यादा तेज बारिश की पेशगोई की है। भारत ने जापान में आइची नगोया एशियाई खेल 2026 में आज तमगों की फहरिस्त में अपना मजबूत मकाम बना लिया और उसने कबड्डी, खेलकूद और निशानेबाजी जैसे खेलों में 7 मजीद तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और खवातीन की कबड्डी टीमों ने आज सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 40 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनी खेज फाइनल में 34 के मुकाबले 37 के फर्क से कामयाबी हासिल करके सोने का तमगा जीता। एथलीट्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉर्ट पुट फेंक कर चांदी का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इतफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया, ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजली।

0: आई।
1: हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जादवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का

निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की शर्त

दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

के बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना ना।
1: 26 सितंबर 1989 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत, ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईची नागोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं

0: हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका। महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म। सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक। आशी चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन। ज्योश्ना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैच पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
0: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजिशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रहीं और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गईं।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
1: इट वॉज अ 3 मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वॉज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन Games medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pahal missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds, while Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज

0: का दिन सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीत कर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनी सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
0: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
2: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा। हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वैनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
0: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
1: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने दो क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
0: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
3: अ डे ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्चून्स फॉर इंडिया इन द इंडिविजुअल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन एट द एशियन गेम्स। लक्ष्य सेन सिंगल्स कैंपेन केम टू एन अर्ली एंड अगेंस्ट फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लोकिन यू। द इंडियन फॉट बैक आफ्टर लूजिंग द ओपनिंग गेम, बट द सिंगापोरियन प्रिवेल्ड 21-12, 15-21, 21-14 इन अ कॉन्टेस्ट दैट लास्टेड ओवर an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshay, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16, to book her place in the women's singles quarterfinals.

0: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
1: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लिचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
0: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
2: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ 2 गेम्स डाउन एंड देन 2 मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
0: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा, बता रहे हैं शाहिद आजमी।
3: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के अनुषा के सामने चीन के लिन शिंदोंग की चुनौती थी। लिन शिंदोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुषा को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुषा भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुषा की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
0: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
2: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishtha, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
0: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
2: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
0: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग

के विमेंस शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी, यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना UAE से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरे रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये सुनते हैं हम फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा FM 103 मेगाहर्ट्ज़ से। बने रहे हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र में। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:22:19 हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के शुरू में महबूब की मेहंदी। फिल्म के इस गाने को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत।

भाई और बहनों, कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 2,00,000, कोई कहता है 50,000, कितने गाने कितनी जबानों में और किस किस किस्म के गाने गाए हैं। माँ का गाना है तो बच्चों को रुला दिया है, बच्चों का गाना है तो माँ को रुला दिया, भाई का गाना है तो बहन को रुला दिया है, बहन का गाना है तो माँ को रुला दिया है। वो लता मंगेशकर आज पर बोझ रखती

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म गाइड के इस गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और एसडी बर्मन के संगीत।

परवरिश गाने की गाने को सुना, परवरिश फिल्म के गाने को सुना आपने मुकेश की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और दाताराम के संगीत थे। और अब आइए सुनते हैं फिल्म ताजमहल के गाने को।

अभी आपने सुना फिल्म मल्हार के गाने को लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में रोशन के संगीत इंदिवर के बोल थे। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पे।

अभी आपने सुना फिल्म अनपढ़ के गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में, मदन मोहन के संगीत राजा मेहदी अली खां के बोल थे। और अब आइए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम लेके हाजिर हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, 10:56 और 7 सेकेंड हो गए हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में। रात्रि 11 बजे हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार और 11:05 पे अंग्रेजी समाचार के लिए। आइए सुनते हैं फिल्म मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आके गाने को। शंकर जयकिशन के संगीत है हसरत जयपुरी के बोल, और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यही होता है समाप्त। रात्रि 11 बजे हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा से हिंदी समाचार के लिए।

0: समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today inaugurated the country's first Victim Rights Centre in Patna. The first of its kind Victim Rights Centre in the country's established.

10 मिनट हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यही संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद। होंगे आपकी सेवा में तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।